श्रोताओं सुप्रभात। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज शनिवार है। राष्ट्रीय शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसवीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातःकाल के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाय थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

देश प्रेम केवल शब्द नहीं बल्कि एक भावना है। अपने देश की संस्कृति, ध्वज और संविधान का सम्मान करना सच्चा देश प्रेम है। ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर हम राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे सकते हैं।

भक्तों की दुख दूर करने वाले संकट मोचन हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। उनके स्मरण मात्र से ही भय का नाश हो जाता है और जीवन में शक्ति, साहस और विश्वास का संचार होता है।

साई बाबा प्रेम, दया और मानवता के प्रतीक थे। उन्होंने सबका मालिक एक ये संदेश देकर लोगों को एकता और सेवा का मार्ग दिखाया। साई बाबा की शिक्षाएं आज भी हमें सत्य, श्रद्धा और सबूरी का महत्व सिखाती है।

गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी हमें साहस, सत्य, धर्म और मानवता का संदेश देती है। गुरु जी ने प्रेम, सेवा और समानता का मार्ग दिखाया। आइए उनकी वाणी को जीवन में अपनाएं और सत्कर्म के मार्ग पर चलें।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र मीडियम वीव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमारे केंद्र को सुन रहे हैं प्रसार भारती न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। लीजिए, प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: नैतिकता, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में सत्य, ईमानदारी, आदर्श, चरित्र जैसे भाव आ जाते हैं। हम सब नैतिकता की बातें करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, समाज से अपेक्षा रखते हैं, दूसरों में खोजते हैं, लेकिन एक प्रश्न है, क्या नैतिकता केवल शब्दों में है? क्या केवल अच्छे विचार, अच्छे भाषण, अच्छी सलाह ही नैतिकता है? या नैतिकता वहां शुरू होती है जहां शब्द समाप्त होते हैं और कर्म बोलने लगते हैं? नैतिकता किताबों का अध्याय नहीं है, यह कोई मंच से दिया गया भाषण नहीं है। नैतिकता वह है जब कोई देख ना रहा हो फिर भी हम सही करें, जब अवसर छलका हो और हम सत्य का साथ दें। नैतिकता विचार नहीं, व्यवहार है। एक छोटा बालक स्कूल से लौटते समय रास्ते में एक बटुआ पाता है, उसमें बहुत पैसे थे, वह घर ले जा सकता था, कोई देख भी नहीं रहा था, लेकिन वह सीधे पास के थाने गया और बटुआ जमा कर दिया। लोगों ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बालक बोला, अगर मैं इसे रख लेता तो पैसे तो मिल जाते लेकिन मैं खुद को खो देता। यह है नैतिकता, जब बाहरी लाभ से अधिक भीतर की सच्चाई महत्वपूर्ण हो। हम सब कहते हैं ईमानदार बनो, सत्य बोलो, दूसरों की मदद करो, पर प्रश्न यह है, क्या हम स्वयं ऐसा करते हैं? बच्चा हमारे शब्दों से कम, हमारे कर्मों से अधिक सीखता है। समाज भी उपदेश से कम, उदाहरण से बदलता है। नैतिकता समाज सुधार से पहले घर से शुरू होती है। माता पिता का सम्मान, घर के काम में सहयोग, वचन निभाना, बच्चों के सामने सही उदाहरण देना। यदि घर में सत्य नहीं तो बाहर की छवि केवल दिखावा है। एक गरीब माँ अपने बेटे को बाजार भेजती है, दुकानदार गलती से एक सिक्का अधिक लौटा देता है। बेटा खुश होकर घर आता है, माँ गिनती है और कहती है, यह हमारा नहीं है। वह बेटे को वापस भेजती है, बेटा कहता है, माँ दुकानदार को पता भी नहीं चलेगा। माँ मुस्कुराती है, उसे नहीं चलेगा पर हमें तो चलेगा, यही नैतिकता है। क्योंकि गलत रास्ता अक्सर आसान दिखता है, झूठ बोलना आसान है, बहाना बनाना आसान है, लाभ लेना आसान है, लेकिन आसान मार्ग हमेशा सही मार्ग नहीं होता। एक राजा रात्रि में अपने मंत्री के साथ राजकीय कार्य कर रहा था। कार्य समाप्त हुआ फिर राजा ने राजकीय दीपक बुझा दिया और अपना निजी दीपक जलाया। मंत्री ने पूछा, महाराज ऐसा क्यों? राजा बोले, अभी तक राज्य का कार्य था इसलिए राज्य का दीपक जल रहा था, अब निजी वार्ता है इसलिए निजी दीपक। यह छोटी घटना नहीं, महान नैतिकता है। काम केवल कमाई नहीं, चरित्र की परीक्षा भी है। एक बस चालक रोज समय पर आता, एक दिन उसे सड़क पर एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी। बस लगभग भर चुकी थी फिर भी उसने बस रोकी, उतरा, महिला को सहारा देकर चढ़ाया। किसी ने कहा, इतनी देर क्यों की? चालक बोला, यदि समय बचाकर इंसानियत खो दूं तो समय पर पहुंचना व्यर्थ है। नैतिकता की असली परीक्षा भीड़ में नहीं, अकेले में होती है। जब कोई नहीं देख रहा तब हम क्या करते हैं? क्या हम नियम मानते हैं? क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम किसी का हक नहीं लेते? यही चरित्र है। अब अपने भीतर पूछिए, क्या मेरे शब्द और कर्म एक जैसे हैं? क्या मैं सुविधा के लिए सिद्धांत बदल देता हूँ? क्या मैं अकेले में भी वैसा ही हूँ जैसा दुनिया के सामने दिखता हूँ? क्योंकि हम सब चाहते हैं ईमानदार नेता, सच्चा समाज, न्यायपूर्ण व्यवस्था, पर शुरुआत दूसरों से चाहते हैं, जबकि परिवर्तन हमारे छोटे कर्मों से शुरू होता है। नैतिकता मंच पर बोले गए शब्द नहीं, वह है लौटाया हुआ अतिरिक्त पैसा, निभाया हुआ वचन, रोका हुआ झूठ, किया हुआ न्याय और निभाई हुई इंसानियत। नैतिकता की आवाज शब्दों से नहीं, कर्मों से सुनाई देती है। जीवन में प्रतिष्ठा लोग देते हैं पर चरित्र हम स्वयं बनाते हैं, और चरित्र बनता है रोज के छोटे छोटे कर्मों से। नैतिकता बोलती नहीं, दिखाई देती है।
0: आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, खेती की बातें। आइए इसके अंतर्गत सुनते हैं सोयाबीन की बौनी की उन्नत विधियां। वाचक स्वर डॉक्टर अनुराधा शर्मा।
2: सभी किसान भाई बहनों के डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों, आज बात करांगा सोयाबीन की बुआई की अलग अलग तकनीकना का बारा में। अपन यह बात बहुत अच्छा तरीका से जाना कि सोयाबीन भारत की प्रमुख दलहनी और तिलहनी फसल है, और मध्य प्रदेश तो सोयाबीन को प्रदेश है। पर जब सोयाबीन की उपज अपने अच्छी चाहिए हो तो खाली उन्नत किस्म से काम नहीं चले, साथ साथ बुआई की अच्छी तकनीक को चयन भी बहुत आवश्यक है। अच्छी तकनीक को चयन हो तो पौधावन की संख्या संतुलित रहे, नमी को बेहतर उपयोग हो जाए, खरपतवार नियंत्रण में आसानी हो, पौधावन को विकास अच्छे हो और

0: करें। इन्हीं विधि में कही है कि सीड ड्रिल जो मशीन है उसमें बीज डाल दे, उकासी बुआई आसान हो जाए, कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर तक हो जाए और पौधा से पौधा की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर तक हमारे किसान भाई बहनों को मिली जाए। इन्हीं विधि में बीज उनकी बहुत बचत हुई जाए, पौधा उनकी संख्या भी गिनती की रहे, संतुलित रहे, इक्कासी खरपतवार नियंत्रण बहुत आसान हो जाए और खरपतवार नहीं उगे तो उत्पादन में वृद्धि मिली जाए हमारे किसान भाई बहनों के। तो ये बहुत प्रचलित विधि है अभी ना समय किसान भाई बहनों के बीच में। एक सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जी आए नहीं, उकासी भी हमारा बहुत सारा किसान भाई बहनों इन्हीं आधुनिक तकनीक से सोयाबीन की बोनी बहुत सारा किसान भाई बहनों ने शुरू कर दी। जैसा कि अपने नाम से समझ में आई रहो सीड कम फर्टिलाइजर, इसका अर्थ है कि मशीन का द्वारा बीज और उर्वरक एक साथ एक निश्चित गहराई पर नीचे चली जाए तो उर्वरक जो है वह समुचित मात्रा में उनको वितरण बिल्कुल एक समान हो। इक्कासी हमारा किसान भाई बहनों की मेहनत बची जाए, समय बचे और सबसे ज़्यादा अच्छो काम इन्हीं विधि में है कि उर्वरक उनको बहुत अच्छो उपयोग हुई जाए। इन्हीं विधि से जो किसान भाई बहनों बोनी करें उनके 10 से 15% तक की वृद्धि उनके उत्पादन में मिले। ऐसा किसान भाई बहनों जिनका खेत में जल भर ही जाए या जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं है उनका लिए रीज एंड फेरो पद्धति बहुत आसान बहुत सरल पद्धति है। रीज एंड फेरो पद्धति को नाम अपने समझ में आ रही है कि मेड़ बने और नाली हुंदी बने साथ साथ, बीज जो है वे मेड़ पे लगाए हमारे किसान भाई बहनों और नाली से जी अतिरिक्त जल है वह निकली के बाहर चली जाए खेत से और जल भराव की समस्या से किसान भाई बहनों के निजात मिली जाए। एक और उन्नत तकनीक है सोयाबीन की बुआई के लिए ब्रॉड बेड, जिसमें कई हो कि बहुत बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा बेड बनाई दे 120 से लेके 150 सेंटीमीटर तक का चौड़ा बेड और चौड़ा बेड के दोनों ओर नाली हुन बनाई दे, वो बेड पे कतार हुन में सोयाबीन लगाई दे। जल भराव होने वाला खेत में जल भराव से बचाव की सबसे अच्छी विधि है ये। जल भराव नहीं हो तो पौधा में वृद्धि आसान हो जाए, उत्पादन में भी अंतर दिखे और वर्षा को जो अतिरिक्त जल है वह भी नाली हुन से निकली के खेत का एक कोना में इकट्ठी हो जाए, वहाँ वर्षा जल को बेहतर प्रबंधन भी कर सके हमारा किसान भाई बहनों। अब बात करा एक सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण तकनीक के बारे में जिसको नाम है जीरो टीलेज या बिना जुताई की विधि। नाम से समझ में आ रही हो है कि बिना जुताई, जुताई को खर्च बिल्कुल नहीं, खाली पिछली फसल का जी अवशेष है ओके खेत में रहने दे हमारा किसान भाई बहनों और सीधे मशीन से अगली फसल की बुआई कर दे। इक्कासी कई हो है कि जुताई को खर्च बिल्कुल खत्म हो जाए और मिट्टी में जो नमी है वह जुताई नहीं होना के कारण मिट्टी में बनी रहे, मिट्टी में नमी को संरक्षण हुई जाए और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिली जाए। तो यदि हमारा किसान भाई बहनों इन्हीं उन्नत तकनीकों को इस्तेमाल उपयोग बोनी के लिए करेगा सोयाबीन के लिए तो 15 से 25% तक उनके उत्पादन अच्छो मिली सके, बीज और उर्वरक की बचत हुई जाए और खरपतवार निकालना के लिए उनके नियंत्रण करने में बहुत सुविधा भी हुई जाए और जब खरपतवार ज़्यादा नहीं उगेगी खेत में तो लागत में कमी हो जाएगी और लाभ में वृद्धि होगी, किसान भाई बहनों के उत्पादन अच्छो मिलेगो। आज हमारा किसान भाई बहनों से योज केणु है।
1: खेती की बातें, इसमें आप सुन रही थी सोयाबीन की बोनी की उन्नत विधियां। वाचक स्वर डॉक्टर अनुराधा शर्मा का था। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग अनुराधा पोडवाल के स्वर में।

विधाता जो ललाट पर लिख देता है उसे देवता, दानव, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। देवर्षि नारद ने पार्वती के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी करते हुए हिमाचल से कह दिया, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसे मिलेगा। यदि तुम्हारी कन्या कठोर तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं, किंतु इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं। पार्वती को देख मैना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्यार से

पुत्री को गोद में बिठा लिया। तब पार्वती ने माता को अपना स्वप्न सुनाया और योग्य वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने का अपना निश्चय प्रकट किया।

0: अभी आप सुन रही थी श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग अनुराधा पोडवाल के स्वर में। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज दिन में 3:55 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे हम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने के कार्यक्रम का प्रसारण, जो जारी रहेगा कार्यक्रम की समाप्ति तक। अब से कुछ देर बाद यानी 7:20 से आप सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। 8:30 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत सुबह 9 और शाम 6:45 पर लोक संगीत में हम आपको सुनवाएंगे सखाराम सीताराम और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी, ये कार्यक्रम रिले करेंगे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 9:10 पर। शास्त्रीय संगीत में सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग मदमत सारंग। जिले की चिट्ठी रिले को होती है भोपाल केंद्र से सुबह 10:00। फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10:05 से। दिन में 11 से दोपहर 3 तक के कार्यक्रम रिले करेंगे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, जिनका विवरण इस प्रकार है। दिन में 11 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इस घंटे की खास खबरें होंगी दोपहर दिन में 11:58, दोपहर 12:58 और दोपहर 2:58 पर। फिल्म संगीत होगा दिन में 12:00। संग्रहालय से ये कार्यक्रम होता है दोपहर 12:30 पर। महिला कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:00। 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। सुगम संगीत होगा दोपहर 1:45 पर। दोपहर 2:00 और 2:30 पर सुनेंगे आप फिल्म संगीत। हमारी सांध्यकालीन सभा का आरंभ होता है शाम 5:00 युवावाणी कार्यक्रम के साथ। आज के इस कार्यक्रम में आज का हमारा क्रम होगा हेलो फ्रेंड्स। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 5:45 पर। शाम 6:00 हम आपको सुनवाएंगे विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता जनगणना में जन भागीदारी जरूरी। इस विषय पर प्रगणन अधिकारी श्री अशोक वानखेड़े से नीलम की बातचीत। शाम 6:30 पर सुगम संगीत में आप सुनेंगे विभिन्न कलाकारों के स्वर में गीत। खेती गृहस्थी ये कार्यक्रम होता है शाम 7:20 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता उद्यानिकी फसलों में समसामयिक कार्य। जानकारी देंगे श्री सुभाष चंद्र श्रीवास्तव। दिल ने फिर याद किया ये कार्यक्रम होगा रात्रि 8:00। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रगीत। राष्ट्रीय चित्र पत्रिका चित्र भारती रिले करेंगे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:30 पर। दिल्ली केंद्र से ही रिले होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10:00। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रही थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य ओडिशा पश्चिम बंगयोः प्रवासे भविष्यति। ओडिशायाः मयूरभंज मण्डले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः अष्टषष्टितमे जन्म दिवसोत्सवे प्रधानमंत्री तया सह पहाड़पुर ग्रामे सम्मिलितो भविष्यति। तदनन्तरं तौ नेतारौ ओडिशा राज्ये मोहन चरण माझी प्रशासनस्य वर्षद्वयस्य कार्यकाल पूर्त्यवसरे एकां विशाल जनसभां संबोधयिष्यतः, यत्र हि 47,000 कोटितोप्यधिक रूप्यकाणां विकासात्मक परियोजनानां शुभारम्भो भविष्यति। पश्चिम बंगे प्रधानमंत्री पश्चिम बंग दिवसावसरे भागं ग्रहीष्यति, यत्र हि अनेकासां प्रणालीनां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। अस्मिन्नेव अवसरे प्रधानमंत्री पीएम कृषि सम्मान निधिं प्रसारयिष्यति, येन देशस्य 9.44 कोटि कृषकेभ्यः 80+8,18,000 रूप्यकाणि साक्षात् तेषां वित्तकोषेषु स्थानान्तरितानि भविष्यन्ति। एनटीए इति राष्ट्रिय परीक्षा संघटनेन प्रख्यापितं यत् श्वः आयोज्यमानायाः नीट यूजी 20-26 पुनः परीक्षायाः निष्पक्षं पारदर्शं च संचालनाय वयं पूर्णरूपेण सज्जाः। परीक्षेयं भारतस्य 150+500 नगरेषु, विदेशस्य च 14 नगरेषु आयोज्यन्ते। इत्यन्तराले एनटीए संस्था परीक्षार्थीनां साहाय्यार्थं एकां आधिकारिक व्हाट्सएप वाहिनीमपि निरमात्। संघटनेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे आधिकारिकाः सन्देशाः केवलं तस्य प्रमाणीकृत संख्यातः एव प्रेषयिष्यन्ते। सा संख्या वर्तते 9178279802877 इति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर प्रत्यपादीत यत् अशांत जगति भारतेन स्वकीय राष्ट्रहितस्य रणनीतिक स्वायत्ततायाः अथ बहुध्रुवीयतायाः रक्षणं कुर्वता, सहैव विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रैः सह स्वसंबन्धाः इतोपि सुदृढाः करणीयाः। नवदिल्ल्यां भारत अमेरिका मञ्चस्य गोष्ठ्याः सत्रं संबोधयन् डॉ जयशंकरः अवोचत् यत् अनेक जटिलतासु सत्सु अपि भारत अमेरिका देशयोर सहभागित्वं विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अविरतं वर्धमानमस्ति। तेन सविशेषं प्रकटीकृतं यत् यथा यथा भारतस्य वैश्विक उत्कर्षो भविष्यति, तथा तथा तस्य राष्ट्रिय हितानि अपि विशालानि विविधानि च भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य एकस्य कार्यक्रमस्यान्तर्गतं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनायां 4,00,000+2,000 कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहन राशिं वितरितवान्। एकस्मिन् महत्वपूर्णे निर्णये सर्वोच्च न्यायालयः उदघोषयत् यत् निर्धारिते पदपथि चलनस्य अधिकारः नागरिकस्य मौलिकाधिकारो वर्तते। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा अथ न्यायमूर्ति एएस चंद्रूरकर इत्यनयोः प्रतिपादितं यत् निर्धारित पदपति चलनस्य नागरिकस्य अयं मौलिको अधिकारः प्राथमिकः अस्ति, सहैव यन्त्रीकृत वाहनानां गमनागमनस्य अपेक्षया अस्य प्राथमिकता भविष्यति। फीफा विश्व कप प्रतियोगितायां मैक्सिको दलेन दक्षिण कोरिया दलं 1-0 अंकान्तरालेन पराजितम्। क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तानयोर्मध्ये तृतीया अन्तिमा च एकदिवसीय स्पर्धा अद्य अपराह्णे चेन्नई नगरस्य एमए चितम्बरम क्रीडांगणे भविष्यति। अवधेयं यत् एषः द्वन्द्वः अपराह्णे 1:30 वादनतः समारप्स्यते। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमएच चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंककर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
3: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
4: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
5: GST काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या?
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: और सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र मीडियम वीव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमारे केंद्र को सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। सुबह के 7:10 होने को है, थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।

0: आकाशवाणी भोपाल है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा बंगाल दौरे पर, रायरंगपुर में 47,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, बंगाल में किसानों को सम्मान निधि की मिलेगी सौगात।

0: 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज इंदौर के सावेर में देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात। और प्रदेश में मानसून 8 से 10 दिन लेट, आज भोपाल इंदौर समेत 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे और दोनों संथाली जहरा तथा हो जहरा के पावन स्थलों पर प्रार्थना करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में 47,000 करोड़ रुपये के से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल दौरे में प्रधानमंत्री आज हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे और पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करते हुए 9,44,00,000 किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70,00,000 जॉब सृजित हुई है। करीब 20,00,000 युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज इंदौर जिले के सावेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 42,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की आवास स्वीकृतियां प्रदान करेंगे। इसके तहत 38,000 से अधिक परिवारों को नवीन पक्के आवासों में गृह प्रवेश कराया जाएगा। इस दौरान वे 2,935 करोड़ रुपए की लागत वाली करीब 48 किलोमीटर लंबी इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना का भूमि पूजन भी करेंगे। वहीं कल केंद्रीय मंत्री ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के साथ ऊर्जा और स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक भी की। भोपाल में एमपीआईडीसी मुख्यालय में रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को लेकर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय के उप महानिदेशक सुशील कुमार सतपुते ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा जब उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप और शिक्षण संस्थान साझा मंच पर आकर नवाचार आधारित रक्षा विनिर्माण को आगे बढ़ाएंगे। कार्यशाला में देशभर के 40 से अधिक प्रमुख उद्योगों और शोध संस्थानों ने भाग लिया। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों और वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया है। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुँचने की अपील की गई है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताएंगे।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
0: राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला, विकासखंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। भारत सरकार ने इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी है। पासपोर्ट आवेदनों के पुलिस सत्यापन में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रदेश पुलिस को विदेश मंत्रालय द्वारा 5 लाख से कम आवेदन श्रेणी में देश में प्रथम स्थान दिया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश पुलिस को इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस से सम्मानित किया। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने बताया कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में कुल 3,35,000 से अधिक पासपोर्ट सत्यापन समयबद्ध तरीके से पूरे किए गए। प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भोपाल मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों पर अब ड्राइव इन सिनेमा की शुरुआत की जाएगी। साथ ही यहां स्टार्टअप्स और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित होगी। इस योजना का उद्देश्य स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित बहुआयामी शहरी केंद्र के रूप में विकसित करना है, ताकि वे व्यापार, पर्यटन और रोजगार सृजन के प्रमुख केंद्र बन सकें। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। पुस्तक के प्रधान संपादक पुरुषोत्तम श्रीवास ने बताया कि इसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषकों के आलेख शामिल है। समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ पांडे होंगे, जबकि अध्यक्षता विविध भारती मुंबई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक जी श्याम करेंगे। पुस्तक पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल और डॉक्टर श्रीकांत पांडे भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि सामान्यतः मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मेजबान भारतीय टीम पहले ही 2-0 की बढ़त के साथ श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में तुलसीनगर पुलिया से निपानिया तक सड़क और सीवर लाइन निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं शुभारंभ किया। खंडवा के कृषि महाविद्यालय में आज किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों से परिचित कराने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। आगरमालवा के ग्राम गाता में 750 बीघा शासकीय गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए सीमांकन किया गया। राजगढ़ में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष पंजीयन शिविर आयोजित किया गया। बैतूल में कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवणे और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने नीट परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। और इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में रेशम समृद्धि योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए नवीन कृषकों का ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

0: स्वागत है सभी श्रोताओं का सदाबहार फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम सुनहरी पल में। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।
1: My father slept, ate, drank, went, did all, nothing but his movie. Ek Radha, Ek Meera. Ye gana papa ne Delhi mein ek function mein suna. He told Ravindra Jain ki aapne jo function mein ye gana sunaya tha, wo ek baar mujhe phir suna dijiye. He sang the song again and he signed him for Ram Teri Ganga Maili. That's how Ram Teri Ganga Maili came. The beautiful part was that the way that man portrayed Ram Teri Ganga Maili. Kis tarike se is film ko banaya, isko symbolize kiya, isse convey kiya logon ko.

लीजिए अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम आन मिलो सजना।

0: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने,
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में फागुन फिल्म का गीत। कमर जलालाबादी का लिखा हुआ ये गीत है और संगीत ओपी नैयर का।

ये गीत आ रहा है लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में कभी कभी फिल्म से। साहिल लुधियानवी का गीत और संगीत खय्याम का।

अब हम आपको सुनवाते हैं कारवां फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच कहा। इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं,
3: क्या
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: पर सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

सुनहरे पल कार्यक्रम का आखिरी नगमा हम आपको अब सुनवा रहे हैं, फर्ज फिल्म से, जिसे गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुन रही थी सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरी पल। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और फिर उसके ठीक बाद 8:15 से आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान, पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68

0: जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल एक से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
5: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
3: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MH चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद विश्वास। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से PM किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और SEBI ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of the series in Chennai this afternoon. In a rare confluence of constitutional leadership and developmental vision, Prime Minister Narendra Modi is visiting Odisha this morning, where he will join President Draupadi Murmu in her home district of Mayurbhanj. The visit coincides with the President's 68th birthday and the celebrations marking 2 years of the Odisha government. Our correspondent reports from Rairangpur.
1: In a rare and significant engagement, the President and the Prime Minister will jointly offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit local educational and skill development institutions, underscoring the nation's commitment to the empowerment of tribal communities. Later, the two leaders will participate in a grand public program at Rairangpur, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led Odisha government. Development projects worth more than 47,000 crore rupees will be inaugurated by the Prime Minister and foundation stones laid across key sectors. Including energy, transportation, health, education, irrigation and industrial infrastructure. President Murmu and Prime Minister Modi are also scheduled to address a massive public gathering. Prakash Das from Rairangpur, Akashwani News.
7: Prime Minister Modi has extended greetings to President Murmu on her birthday. Mr. Modi said that the President's journey marked by courage, simplicity, humility and an unwavering commitment to public service that continues to inspire people across the country. Later in the day, Prime Minister Modi will release over 880 crore rupees to the bank accounts of 9 crore 44 lakh farmers nationwide under the PM Kisan scheme from Hooghly in West Bengal. This also includes over 900 crore rupees to the accounts of more than 45 lakh farmers of West Bengal. We have more details on the Prime Minister's visit from our correspondent.
8: Prime Minister Narendra Modi is arriving in West Bengal today on a 2 days visit for the first time since the BJP formed the government in the state. During his stay, he will attend the West Bengal Day celebrations in Tarakeshwar in Hooghly, lead the International Yoga Day program in Kolkata's Red Road and dedicate three indigenously built warships, INS Dunagiri, INS Sanshodok and INS Agrai to the nation. He will also inaugurate and lay foundation stones for several key projects. These include railway initiatives worth nearly rupees 590 crore, a new 300-bed railway hospital in Howrah and a rail overbridge in East Midnapore. He will also launch 49 rural road projects under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, strengthening connectivity across more than 315 kilometers. In agriculture, Mr. Modi will formally introduce the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in West Bengal, providing insurance coverage to nearly 50 lakh farmers. He will also unveil new initiatives under the Digital Agriculture Mission, including AgriStack and the Dhanodhanno Krishi Yojana. The Prime Minister's program extends to fisheries and animal husbandry with projects such as modern fishing harbour at Fraserganj, a fish market in Birbhum, and Eastern India's first goat semen research laboratory in Nodia.
9: Sandeep Andashgupta, Akashbani News, Kolkata.
7: Prime Minister Modi has extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Paschim Banga Divas. Mr. Modi said this day celebrates a state that has made immense contributions to the country's history through literature, music, art, spirituality, science, trade, commerce and social reform. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal has been appointed as the next vice president of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agrawal, currently serving as Secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the Global Anti-Money Laundering and Counter-Terror Financing Watchdog. The Ministry of External Affairs has termed Mr. Agrawal's selection a major win for India. In a social media post, the ministry said, "The appointment reinforces India's commitment to combating terrorism financing and illicit financial networks." The National Testing Agency, NTA, will conduct a nationwide mock drill today ahead of the NEET UG re-examination 2026. It is part of the preparations to ensure smooth, secure and transparent conduct of the examination. More from our correspondent.
10: The National Testing Agency has said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled tomorrow. In a statement, NTA said that exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted that more than 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators have been deployed. The NTA noted that multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. It includes CCTV surveillance, Aadhaar-based biometric verification and GPS-enabled vehicles with police escort for movement of examination materials. The re-examination will be conducted from 2 p.m. to 5:15 p.m. in pen and paper mode. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
7: The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has approved a series of reforms aimed at improving market efficiency, easing compliance requirements and strengthening regulatory frameworks across the financial sector. At the 214th meeting held in Mumbai yesterday, the SEBI board simplified the transmission of securities for legal heirs and claimants that are in the name of deceased investors. SEBI chairman Toheen Kanta Pandey shared the details after the crucial board meeting.
11: The key decisions relates to simplifying

सपने जो संग सजोए वो सारे करने हैं पूरे सतरंगी इस दुनिया में, बस तेरे ही संग हो सवेरे मोहब्बत के बादल से बरसे जो पानी, तुम उस पानी की बूंद हो जाओ। दिल ने फिर याद किया है, हो सके तो लौट आओ।

0: जो दिल से खूबसूरत न हो उसे कोई प्यार नहीं करता। ये मोहब्बत का काफिला है, यहां हाथ थामे चला करो, क्योंकि जो हाथ छूट जाए तो कोई इंतजार नहीं करता।
1: मैं उसके लिए मर चुकी हूं।
2: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
1: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
2: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज दिन में 3:55 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे हम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने के कार्यक्रम का प्रसारण, जो जारी रहेगा कार्यक्रम की समाप्ति तक। आज दिन में 10:05 से आप सुनेंगे श्रोताओं की पसंद के फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए आप हमें इन नंबर पर फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 07312710223 और 07312710224। तो जुड़िए हमसे 10:05 से और सुनिए अपनी पसंद का फिल्मी गीत। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमारे केंद्र को सुन रहे हैं प्रसार भारती न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। सुबह के 9 बजे हैं, वक्त है लोक संगीत का। लोक संगीत में आइए सुनते हैं सखाराम सीताराम और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। पहले सुनिए इनके स्वर में ये निमाड़ी लोकगीत।

0: सखाराम सीताराम राठौर और साथियों के स्वर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये निमाड़ी लोक भजन।
1: बचपन के लिए

लोक संगीत में आप सुन रहे हैं सखाराम सीताराम राठौर और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत, और अब इनके ही स्वर में आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं निमाड़ी कृषि लोकगीत।

लोक संगीत में अभी आप सुन रही थी सखाराम सीताराम राठौर और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। हम आपको बता दें इनके ही स्वर में गाए कुछ और लोकगीत आप सुन सकते हैं आज शाम 6:45 पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। सुगम संगीत में आइए सुनते हैं गजलें। पहले सुनिए निजा फाजली की लिखी गजल ए हरिहरन के स्वर में।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, और अब हम आपको सुनवाते हैं निजा फाजली की ही लिखी गजल जगजीत सिंह की स्वर में।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रही थी गजलें। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत में आइए सुनते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग मदमत सारंग।

आप सुन रही थी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग मदमत सारंग। और इस बांसुरी वादन के साथ ही आज का शास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होगा।

0: प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख है फिरोज खान का, वाचन स्वर नवनीत चौबे के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज खान, वाचन स्वर नवनीत चौबे। सिवनी जिले में मानसून के आगमन का इंतजार करते हुए किसान खरीफ फसलों की तैयारी में लग गए हैं। पिछली रबी फसल में अच्छी पैदावार मिलने से किसानों में उत्साह है। पिछले वर्ष जिले में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोनी हुई थी। इस बार खेती का रकबा और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए जिले में कृषि रथ रवाना किया गया है। यह रथ सभी विकास खंडों की ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेगा। कृषि वैज्ञानिक और विभागीय अधिकारी किसानों को उन्नत खेती, जैविक कृषि और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही फसल विविधीकरण और मृदा स्वास्थ्य पर भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। गंगा दशहरा के अवसर पर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन लखनवाड़ा के वैन गंगा घाट पर हुआ। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आरोह 2026 का समापन उत्साह के साथ हुआ। जिले भर के 2500 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया गया। इसी क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, किसानों और नागरिकों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण और युवाओं की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा किए। फिट इंडिया अभियान के तहत विश्व साइकिल दिवस पर सिवनी में संडे ऑन साइकिल रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। प्रतिभागियों ने नियमित साइकिल चलाने का संकल्प लिया। खेल जगत से एक अच्छी खबर आई है। एशिया कप में भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम को कांस्य पदक दिलाने वाली सिवनी की खिलाड़ी नौसीन नाज का सम्मान किया गया। उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 12 गोल किए थे। कलेक्टर ने उन्हें सम्मानित करते हुए 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी जागरूकता बढ़ रही है। दल सागर तालाब में आयोजित श्रमदान अभियान में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने मिलकर सफाई की। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण और हरित सिवनी बनाने का संकल्प लिया गया। इस बीच प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर जन परामर्श प्रक्रिया शुरू हो गई है। सिवनी के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित बैठक में नागरिकों से सुझाव लिए गए। जन सुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से जिले के लोगों की समस्याओं का निराकरण भी लगातार किया जा रहा है। मई माह के पहले सप्ताह से अब तक करीब 800 आवेदनों पर सुनवाई की गई है। भूमि विवाद, आवास, पेयजल और आर्थिक सहायता जैसे मामलों पर आवेदन प्रस्तुत हुए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं। मई माह के पहले सप्ताह से अब तक 12 सड़क दुर्घटनाओं में 17 लोगों की जान गई, वहीं 22 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा डूबने और आग की घटनाओं में भी 2 लोगों की मृत्यु हुई। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सिवनी लगातार आगे बढ़ रहा है। साहित्य प्रेमियों को जोड़ने के लिए जिले में नियमित रूप से काव्य गोष्ठियां और विचार मंचों का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में एक कवि सम्मेलन और मुशायरा आयोजित किया गया। खेलों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच जिले में क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन भी जारी है। धनोरा ग्राम में आयोजित DPL क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रोमांचक रहा। मंडला की टीम ने लखनादौन को 3 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल सिवनी के फुटबॉल स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश पर कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिवनी विकास खंड के केकड़वानी आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता कौशल्या सरोआम और सहायिका लीलाबाई यादव ने अपनी मेहनत और समर्पण से पोषण वाटिका विकसित कर एक मिसाल पेश की है। जून 2024 से शुरू की गई इस वाटिका में आम, पपीता, केला, सहजन, टमाटर, पालक और अन्य फल सब्जियां उगाई जा रही हैं। यहां तैयार होने वाले फल बच्चों और उनके परिवारों को वितरित किए जाते हैं, जबकि सब्जियों का उपयोग आंगनबाड़ी के पोषण आहार में किया जाता है। जिले में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सिवनी जिले के रामगोपाल कहार को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। रामगोपाल ने बताया कि यह आर्थिक सहायता उनके वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत को मजबूती देगी। सिवनी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे शिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख था फिरोज खान का, वाचन स्वर थे नवनीत चौबे के। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं की पसंद के फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।
1: समंदर की लहरों से दूर एक किनारा होगा, सोचो कितना खूबसूरत वो नजारा होगा। बस दिल जो कहे उसे पूरी लगन, शिद्दत, मेहनत और पूरे परिश्रम के साथ करना। फिर देखना जो सोचोगे वो तुम्हारा होगा। और इसी के साथ MH हॉटलाइन कार्यक्रम को लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त योगेंद्र पांडे। स्वीकारें आप प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम के पहले गीत के लिए हम जुड़ते हैं पहले श्रोता से। हेलो MH हॉटलाइन।
3: हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ। मैं ग्राम अकबरपुर तहसील सुरंग जिला विदिशा मध्य प्रदेश से।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका MH हॉटलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि आपने बताया विदिशा से बात कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले आपकी पसंद का गीत हम जानना चाहेंगे।
3: मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी का जुबां खामोश होती है।
1: बिल्कुल, ये गीत सुनने की कुछ
3: जी। और आप कैसे हो?
1: बिल्कुल बढ़िया है, हम भी आज जानना चाहेंगे आप कैसे हैं।
3: बस हम बहुत अच्छे हैं, आपसे पहली बार बात हो
1: अच्छा,
3: रही है। हाँ, प्रोग्राम में हम पहली बार जुड़े हुए हैं।
1: आकाशवाणी इंदौर में पहली बार फोन लगाया आपका
3: जी। लेकिन बीर भारती इंदौर में हमारी बात हो गई, उन्होंने जानकारी दी थी ये प्रोग्राम चालू हो गया है इंदौर में।
1: बिल्कुल,
3: उसके लिए हम कह रहे थे हेलो आकाशवाणी के लिए चालू कर दे, तो ये बोल रहे थे 10 बजे आता है इंदौर में।
1: बिल्कुल, 10:05 से आप इसे अभी लाइव सुन ही रहे हैं और आपका जो है फोन भी लग गया और आपकी पसंद का गीत भी हमने ढूंढ लिया है। तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर
3: जी। धन्यवाद आपका।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
1: फूल हो गुलाब जैसा, महल हो ताज जैसा, और अगर जिंदगी के सफर में दोस्त हो योगेंद्र पांडे जी जैसा।
0: लेकिन जो आपने फूल और गुलाब और महल की बात करी, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि मतलब गुलाब का फूल जो है वो फूलों का राजा होता है और महल तो महल ही
1: हाँ
0: होता है। तो
1: हाँ
0: बिल्कुल आपका कहना सही है। और आपका शुभ नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: मैं पालडा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ सर।
0: जी
1: कैसे हैं
0: जी
1: आप?
0: बिल्कुल बढ़िया। और हम आशा करते हैं आप भी अच्छे होंगे।
1: जी।
0: अपनी पसंद
1: और
0: का
1: सर आप
0: गीत बताएं।
1: बहुत दिनों बाद आए हैं आप, तो हम आपका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और हम इसीलिए आपके सेवा में आपके लिए हाजिर हैं, आपकी पसंद का गीत सुनाने के लिए।

0: तो सबसे पहले आपका जो है वो गीत बताएं, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: अजीबा फिल्म का है, या अली मेरा नाम है अली।
0: बिल्कुल, बताइए मोहम्मद रफी जी, अभी क्या इस समय अभी ये चल रहा है?
1: बस अभी आप नाश्ता सा करके आपको फोन लगाने की तैयारी कर रहे थे।
0: क्या बात है, तो लगभग कितने समय से तैयारी बिल्कुल चालू हो जाती है? थोड़ा सा आप बहुत मेहनत करते होंगे मतलब फोन कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि दो ही नंबर हैं और उन दो नंबरों पे एक साथ सभी का संभव नहीं हो पाता कि फोन लग जाए, तो
1: जी
0: ये भी एक मतलब मेहनत का ही काम हो
1: जी
0: गया।
1: मेहनत मेहनत और
0: हाँ
1: दिल लगी,
0: हाँ
1: मेहनत दिल लगी और ऊपर वाले की मेहरबानी,
0: बिल्कुल,
1: ये
0: तो
1: तीन चीजें रहती सर हमारे साथ।
0: आपके ऊपर बिल्कुल ये सत्य हो गया कि दिल लगी भी हो गई, मेहनत भी सफल हो
1: हाँ,
0: गई और आपकी
1: और
0: पसंद
1: ऊपर
0: का गीत भी
1: वाले
0: हमने ढूंढ लिया है, तो ये हम
1: जी
0: आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए।
1: जी धन्यवाद सर।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन, आदरणीय योगेंद्र पांडे साहब, सादर सुप्रीम प्यार भरा नमस्कार।
0: बिल्कुल, हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले अपना परिचय दें, नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं।
1: मानवर, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर, आप कैसे हैं, मौसम कैसा है?
0: बिल्कुल, अभी तो मौसम जो है यहाँ पर थोड़ा सा धूप छांव वाला खेल है, कभी बादल हैं और कभी धूप है, बट अभी बारिश तो इतनी नहीं हुई है। आपके उधर का बताइए, कैसा क्या है मौसम के हालचाल?
1: महोदय, हमारे मथुरा वृंदावन में चिलचिलाती हुई धूप है, गर्म गर्म हवाएं चल रही है, भीषण गर्मी हो रही है और बारिश तो काफी दिनों से नहीं हुई है, 2-3 सप्ताह से बूंदाबांदी पहले हुई थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप है, गर्म गर्म हवाओं के साथ। मैं आदरणीय योगेंद्र पांडे साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ एमएच हॉटलाइन पर।
0: प्रजापति जी, थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा, सबसे पहले आपकी पसंद का गीत बताएं।
1: मानवर, मैं आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: और मोहम्मद अजीज साहब के साथ में अलका याग्निक ने गीत गाया है। बहुत जताते हो चाह हमसे, ऐ दिल। ये प्यारा सा खूबसूरत मस्ती भरा गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आकाशवाणी इंदौर एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम।
0: बिल्कुल, और ये जो गीत है और गीत के बोल हैं, तो फिल्म का नाम तो आदमी खिलौना है, तो ये ऐ दिल जो है ना, वो आदमी खिलौना इसी के संबंध में है या कुछ और इसका बोल जो है वो कुछ और तरीके से सुनना चाह रहे थे आप?
1: जी, ये गीत बहुत ही प्यारा सुंदर है और अलका याग्निक मोहम्मद जी ने बहुत सुंदर ढंग से गाया है। और आदमी तो दिल का खिलौना होता ही है, दिल चाहता है ये करे वो करे, ऐसा करे वैसा करे, लेकिन जो होना है तो वो होता ही है।
0: सही बात है,
1: इसीलिए शायद इस फिल्म का नाम रख दिया आदमी खिलौना है।
0: प्रजापति जी, आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए।
1: जी, हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगल।

0: हेलो एम एच हॉटलाइन।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
1: जी, मैं शिवपाल गोयल दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर।
0: शिवपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है एम एच हॉटलाइन कार्यक्रम में। और आपसे बात करें उससे पहले हम आपकी पसंद का गीत जो है वो जानना चाहेंगे।
1: जी, फिल्म का नाम है मदहोशी, गाना है ए खुदा तूने मोहब्बत बनाई क्यों है।

0: बिल्कुल। और बताइए श्रीपाल जी, क्या करते हैं आप?
1: तो दिल्ली में काम करते हैं कंपनी में, बस वे ड्यूटी पहुंचे थे और
0: हाँ जी हाँ जी।
1: बोल ट्राई किया तो लग गई।
0: तो दिल्ली में आप मतलब कहीं बाहर से यहाँ पर मतलब काम करने आए हैं या फिर दिल्ली के ही हैं?
1: सर हरियाणा से आते हैं, डेली अप डाउन करते हैं ट्रेन से, और
0: अच्छा,
1: हरियाणा बहादुरगढ़ घर है अपना।
0: तो हरियाणा से आपको दिल्ली लगभग कितनी दूरी तक आना पड़ता है?
1: सर 20 किलोमीटर के बस आस पास है, ज़्यादा नहीं लगता, 1 घंटे में पहुंच
0: किलोमीटर
1: जाते हैं।
0: तो क्या कार्य रहता है आपका?
1: तो अकाउंट से काम है कंपनी में,
0: अकाउंट से
1: अकाउंट
0: संबंधित
1: से।
0: कार्य
1: हाँ
0: करते हैं।
1: जी
0: और रेडियो सुनते हैं आप?
1: हाँ सर, सुनते रहते हैं सभी,
0: तो
1: तो
0: इस
1: सुनते हैं आकाशवाणी के।
0: तो आकाशवाणी में जैसे इंदौर है, तो इंदौर किस समय, सिर्फ फरमाइश के समय सुनते हैं या और भी कोई कार्यक्रम सुन पाते हैं?
1: चिट्ठी वाले सुनते हैं, चिट्ठी
0: अच्छा आप।
1: वाले, ईमेल वाला, जो मन मन भावन मानते हैं ना,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: और शाम को जो आता है शनिवार को 5 बजे, वो भी सुनते हैं।
0: बहुत
1: हेलो
0: बढ़िया।
1: फ्रेंड्स,
0: और इस समय आपका जो गीत है उसके लिए भी आपकी फरमाइश में फ़ोन लग गया, और गीत भी हमने
1: हाँ जी हाँ जी,
0: आपका जो है वो तैयार कर लिया है, हम भेज रहे हैं, बहुत सुनिए आपके
1: धन्यवाद
0: रेडियो सेट पर।
1: जी, धन्यवाद।

0: हेलो एम एच हॉटलाइन।
1: हाँ सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: आपके नियमित श्रोता भागचंद्र साहू जी, राजेंद्र नगर, गंज वासोदा, जिला विदिशा।
0: भागचंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में। और बात हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आपकी पसंद का गीत बताइए।
1: सर जी हमारी पसंद फिल्म का नाम है इतिहास।
0: हाँ जी।
1: और गाने के बोल रहेंगे जुदा अपने दिलवर से होने लगी है और मोहब्बत मोहब्बत को रोने लगी है।
0: बिल्कुल। और ये अलका याग्निक और सुखविंदर सिंह की आवाज में गीत है।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल।

0: और सर कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: और बहुत बढ़िया है सर, परिवार में सब बढ़िया है। पानी पूरी सेंटर का ठेला लगाते हैं हम।
1: अच्छा, तो कितने बजे आप चालू कर देते हैं इसको?
0: सर जी हम सुबह निकलते हैं लगभग 11 बजे, 11:30 तक निकल जाते हैं।
1: अच्छा, फिर उसके बाद शाम को या रात को सीधे?
0: हाँ रात में आते हैं 8 बजे के लगभग।
1: 8 बजे के लगभग। तो पानीपुरी का अपने देश में एक बड़ा विशेष महत्व रहता है। कई जगह उसको पताशे बोलते हैं, कई जगह उसको जो है फुल्की बोलते हैं।
0: हाँ बोलते हैं ना, 3 प्रकार का सिस्टम है।
1: और उसका जो आनंद है वो लगभग जो है कि कहीं भी चले जाइए या कहीं भी अगर जाते हैं और अगर वो ठेला दिख जाता है तो बिल्कुल जीभ में पानी आ जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही आपने।
1: हाँ, ये मतलब ऐसा स्वाद है जो कभी किसी के एक बार अगर किसी ने इसका लिया है तो वो उतरता नहीं है पूरी जीवन भर।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आखिर में वो एक जो सूखी वाली रहती है वो सबसे महत्वपूर्ण रहती है, मतलब अगर वो नहीं मिली तो फिर स्वाद पूरा नहीं होता है।
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है।
1: तो
0: और सर आइए, गंजवासर आए हैं, आपका स्वागत करते हैं पानीपुरी सेंटर पर।
1: बिल्कुल, और इसके साथ में आपका गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए।
0: और सर ये मौसम कैसा है इंदौर का?
1: मौसम तो अभी सामान्य है, बारिश तो अभी ऐसा कुछ हुई नहीं है और हल्के बादल धूप छाव का।
0: गंजवासर में ऐसे ही हो रहा। सर जी एक बात कहना चाहते हैं।
1: बिल्कुल बोलिए।
0: हमारे जो हम पत्र लिख के आपको भेजते हैं,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: वो हमारे पत्र स्टूडियो में क्या पहुँच नहीं रहे, क्या हो रहा है?
1: हाँ बिल्कुल, हम एक बार प्रयास करेंगे और वापस से पत्र जो है अभी एक बार देखने में। आपका इसी नाम से जो आपने बताया, भागचंद साहू जी के ही नाम से भेज रहे हैं?
0: हाँ, राजेंद्र नगर गंजवासुदा जिला दीदी का।
1: बिल्कुल, हम एक बार प्रयास करेंगे और फिर इसके बाद आपको अगर
0: जब सर, कभी हम तो आपके कम से कम 18 साल आकाशवाणी केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ मैं।
1: हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं आप बिल्कुल, इसका जो आपने बोला है हम इसमें प्रयास करके देखेंगे आपके जो लेटर से वो पहुंचे या नहीं पहुंचे।
0: हो सकता है या फिर डाक विभाग वाले लापरवाही कर रहे हो।
1: हाँ बिल्कुल, एक बार हमारे यहाँ पर तो हम देख ही लेते हैं कि पहुंचे या नहीं पहुंचे।
0: हाँ हाँ,
1: गीत तैयार है, हम गीत पहुंचा रहे हैं आपका।
0: बिल्कुल सर, नमस्कार।

0: हेलो एम एच हॉटलाइन
1: बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए कैसे हैं आप।
1: मैं
0: आपकी पसंद का गीत जो है वो बताइए।
1: अभिमान फिल्म का।
0: अभिमान फिल्म का
1: तेरे मेरे मिलन की लेना।
0: तेरे मेरे मिलन की। हाँ जी बताइए क्या करते हैं आप।
1: मैं बड़ी मम्मी बीमार हुआ है और अभी हूँ वो आपके कार्यक्रम सुन रहा हूँ।
0: कार्यक्रम सुनते हैं तो आपको आपको जो फोन इन कार्यक्रम है ये कैसा लगता है।
1: हाँ बोल आता लगता है।
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ
0: और साथ में आपकी पसंद का जो गीत है फोन लग गया और पसंद का गीत जब रेडियो पे बज जाता है तब कैसा लगता है। तो अभी आपका जो गीत है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए।

0: हेलो एम एच हॉटलाइन।
1: हाँ नमस्कार, मैं राजाराम नगर देवास से राजेश अग्रवाल बोल रहे हो। सर
0: राजेश अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम एच हॉटलाइन कार्यक्रम में, और आपका फोन भी लग गया।
1: धन्यवाद।
0: कैसा लग रहा है?
1: बढ़िया लग रहा है सर, बहुत दिनों में 5-6 दिन बाद लगा है फोन, और मैं श्रोताओं से जैसे कहना

0: भी लगातार फोन लगाने में व्यस्त हैं कि उनका कहीं से कहीं कैसे भी उसमें रिंग आ जाए और उनका फोन उठ जाए और उनकी फरमाइश पूरी हो जाए।
1: हाँ, इसलिए कि लंबी बात नहीं करेंगे तो जल्दी लग जाएगा दूसरे श्रोताओं का।
0: ये भी आपका कहना सही है कि अगर जल्दी से बात पूरी करेंगे तो जल्दी से बहुत सारे श्रोताओं की भी फरमाइश पूरी हो जाएगी।
1: हाँ जी, वही एक लोग क्या है, खेती की फालतू की ये सब बातें करते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है इससे।
0: तो इस खिड़की को हम बंद रखते हैं, बंद ना रखते हुए, और आपका गीत जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए आपके रेडियो सेट पर।
1: धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ सर मैं कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी नियमित श्रोता बोल रहा हूँ। सर आपका बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रयोग करते हैं सर, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है।
0: मंसूरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस फरमाइशी फिल्मी गीतों के सजीव फोन इन कार्यक्रम में। और बात आगे करने से पहले आपकी पसंद का गीत बता दें।
1: सर मुझे विजय का गाना सुनना है, बादल पे चल के आ सावन पे ढल के आ।
0: बिल्कुल, और बादलों के साथ साथ जो है अब जो आप जैसा बता रहे थे
1: जी, आगमन चाह रहे अपन ठंडी से थोड़ी राहत मिल जाए।
0: बिल्कुल, कुछ कार्यक्रमों के बारे में आप बता रहे थे।
1: हाँ कार्यक्रम तो सर आपका जो कार्यक्रम होता है चॉइस टाइम्स और जो आपकी पसंद
0: जी
1: एमएच हॉटलाइन, ये कार्यक्रम श्रोताओं के लिए इतना हो गया है कि रीढ़ की हड्डी के जैसा।
0: बिल्कुल, और आकाशवाणी के माध्यम से ये प्रयास भी रहता है कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, और
1: बहुत अच्छा लगा।
0: बिल्कुल, और इस माध्यम से अधिक श्रोता आकाशवाणी से जुड़े, सूचना शिक्षा और मनोरंजन का केंद्र है, तो वो सारी जानकारियां यहाँ से श्रोताओं को प्राप्त हो और अधिक से अधिक श्रोता इससे लाभान्वित हो, ऐसे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते रहना और इसी तरह कार्य करते रहना, ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरा आकाशवाणी परिवार लगा रहता है श्रोताओं के लिए।
1: अब आपका प्रयास भी जो है, जो हाथ के लिखे हुए लेटर भी आप अच्छे उसकी प्राथमिकता देते हैं और उसको तारीफ भी करते हैं।
0: जी जी,
1: और क्या है वास्तविकता होना भी चाहिए।
0: जी जी,
1: आधुनिक युग में जो आज जो हाथ से लिखा जाएगा, जो मन मन, मन और तन से इस कार्यक्रम को सुना जाएगा, तो आदमी के व्यवस्थित रहेगा।
0: बिल्कुल, और जब तक इसी तारतम्य में आप जैसे श्रोताओं का साथ रहेगा, आप जैसे श्रोताओं की क्रिया प्रतिक्रिया मिलती रहेगी, तो कार्यक्रम में सुंदरता निखार सब आता रहेगा। गीत आप तक हम पहुंचा रहे हैं, सुनिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी।

0: हेलो एम एच हॉटलाइन।
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ, मैं ग्राम बालोदा लखा, जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ सर।
0: कन्हैयालाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपकी पसंद का गीत बताइए।
1: हाँ, फिल्म सरगम का सुना दीजिए, मोहम्मद रफी और लता के आवाज में, डफले वाले डफले बजा।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा गीत है। बताइए कन्हैयालाल जी, इस समय क्या करते हैं आप?
1: अभी तो खेत हाथ जो करके मतलब वो क्या, बस बरसात की तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि अब बरसात होएगा तो हम बोएंगे सोयाबीन। अभी खेती कई जुटे हो रहे खेती में।
0: और ऐसा कहा जाता है कि जो मालवा की धरती है, इस पे सोयाबीन की जो फसल है वो सबसे महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है।
1: हाँ, मालवा की फसल तो सोयाबीन की फर्स्ट है
0: जी,
1: और दूसरा नंबर पर गेहूँ भी।
0: बिल्कुल।
1: मुश्किलदार होती है।
0: तो हम आशा करते हैं कि समय से ये सारी प्रक्रियाएं पूरी भी हों और लहलहाती हुई फसल किसानों के घर में आए, और उसके साथ साथ में ये ढपली बजता हुआ गीत कानों में पड़े तो और ही आनंद रहेगा। सुनिए आपकी पसंद का गीत
1: जी, ओके, धन्यवाद।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं श्रोताओं की पसंद के फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। और हम आपको बता दें कि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़कर अपनी पसंद का फिल्मी गीत सुन सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे इन नंबरों पर फोन करना है। हमारे फोन नंबर है 07312710223 और 07312710224। और हमारे वे श्रोता जिनकी फरमाइश इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरी होती है, उनसे ऐसा आग्रह है, उनसे ऐसा अनुरोध है कि वो कम से कम 2 से 3 महीने फिर अगले फ़ोन कॉल के लिए रुकें या इंतज़ार करें, ताकि दूसरे श्रोता जो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं उनकी फरमाइश पूरी हो सके। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं अगला फ़ोन कॉल। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू से।
0: व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में। और पहले हम आपकी पसंद का गीत जो है वो जानना चाहेंगे।
1: सर, आप मुझे फरमा दे, फिल्म का नाम है परिवार और महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज है, गाने के बोल है। हमने जो देखी सपने सच हो गए वो अपने, ओ मेरी साजना, ये वाला गीत।
0: बिल्कुल, और जागती आंखों से जो ये सपने हैं, ये जब हम देखते हैं और उसके साथ साथ वो पूरे होते हैं, तो फिर उसका जो आनंद है, जो उसकी खुशी है, जो उसकी मन में प्रसन्नता है, वो अलग ही दिखती है।
1: लेकिन सर, आजकल तो मैं एक ही सपना देखता हूँ कि मैं शॉर्टलाइन में मेरा कॉल लग गया है।
0: जी जी, तो इस प्रसन्नता के साथ जो है आपका गीत हम आप तक पहुँचा रहे हैं, सुनिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो एम एच हॉट लाइन, हेलो एम एच हॉट लाइन।
1: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्कार
1: जी, मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा था।
0: मनोहर जी बहुत बहुत स्वागत है, समय बहुत कम है, सबसे पहले अपनी पसंद का गीत बता दें।
1: ये फिल्म का नाम है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, गाने के बोल है पा लिया है प्यार तेरा।
0: मनोहर जी क्या करते हैं आप?
1: जी मेरी कपड़े की शॉप है और यहाँ कपड़ा कम संगीत ज्यादा सुनता हूँ, इंदौर आकाशवाणी में आज और लगा तो अच्छा लग रहा।
0: देखिए आपकी जॉब ही ऐसी है कि इसमें आपका जो संगीत है वो आपको सुनने में कुछ ज्यादा ही आनंद देता है, क्योंकि इसके साथ साथ में आपका जो कार्य है वो बड़ी आसानी से हो पाता है।
1: जी जी, मन को खुशी भी मिलती है और टाइम भी बहुत जल्दी पास हो जाता है।
0: बिल्कुल, और बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए अपने रेडियो सेट पर।
1: जी धन्यवाद।

क्योंकि मैं झूठ नहीं फोलता फिल्म के इस गीत के साथ ही MH हॉटलाइन कार्यक्रम से आपके रेडियो दोस्त योगेंद्र पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: हेलो हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: अभी आप सुन रही थी श्रोताओं की पसंद की फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। मीडियम वीव 462.94 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होगा।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म लेकिन का ये बहुत प्यारा सा गीत, स्वर थी लता मंगेशकर की, गीत लिखा था गुलजार ने और संगीत था हृदयनाथ मंगेशकर का। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है सिर्फ तुम। स्वर है उदित नारायण के, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत निर्देशन है उत्तम सिंह का।

कार्यक्रम का अगला गीत राहत फतेह अली खान की आवाज में। ये गीत रचना है फैज अनवर को और इसे संगीत में बनाया है साजिद वाजिद ने। फिल्म है दबंग।

लीजिए अब सुनिए राहत फतेह अली खान की आवाज में फिल्म की सिंग इज किंग का ये गीत। गीत लिखा है मयूर पुरी ने और संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और ये है आकाशवाणी भोपाल। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रावण से। ये गीत गाया है नंदिनी श्रीकर और साथियों ने, शब्द रचना है पंछी जालौनवी की और संगीत है अभिजीत नलानी का।

कार्यक्रम का अगला और बहुत खूबसूरत गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इसे संगीत में बनाया है उत्तम सिंह ने।

डुप्लीकेट। आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनाते हैं इस फिल्म का गीत। कुमार सानू की आवाज़ में, शब्द रचना है जावेद अख्तर की और संगीत है अनु मलिक का।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनाते हैं फिल्म मोहरा का गीत। स्वर हैं पंकज उदास और साधना सरगम के। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत है बिजू शाह का।

पेश है फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बागी से। स्वर है अमित कुमार और अनुराधा पोटवाल की, शब्द रचना है समीर की और संगीत है आनंद मिलिंद का।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष विश्वभर में लगभग 2,500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कल जबलपुर में होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों, विकास खंडों और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मनाया जा रहा है। 17 से 26 जून तक इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्री मानसून के चलते आज 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से चेन्नई में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पहला गीत सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से, सुमधुर आवाज है लता मंगेशकर की, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। इसी गीत को सुनना चाहें नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश इन सभी श्रोताओं की है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर श्रीमती सविता, बेबी स्वाति, माही, पूजा और इनका पूरा परिवार। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजेश, राजदीप, राजेश और राशि राजेश। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म महबूबा का ये बहुत प्यारा सा गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। ये गीत रचना की है आनंद बख्शी ने और इसे संगीतमय बनाया है राहुल देव बर्मन ने।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम तक लिख भेजी है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मनसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। इसी गीत को सुनना चाहे घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मंजिल फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत, जिसमें सुमधुर आवाज़ है लता मंगेशकर की। ये गीत लिखा है योगेश ने और इसकी धुन बनाई है RD बर्मन ने।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में हम तक फरमाइश लिख भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। छत्तीसगढ़ भाटापारा धतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा ने। इसी गीत को पसंद किया है महादेव घाट अमलेश्वर से टोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने। इसी गीत को पसंद किया है राजा रामनगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन और चीकू सल्लू ने। उपाध्याय नगर देवास से पुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा और शिवम वर्मा ने। इसी गीत के लिए हम तक फरमाइश लिख भेजी है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, सुनीता, संगीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। श्रोताओं, आप सभी ने सुनना चाहा है इस फिल्म का गीत जिसका नाम है दिल का क्या कसूर। स्वर हैं अलका याग्निक और कुमार सानू के। ये गीत लिखा है अनवर सागर ने और अनवर सागर के लिखे गीत को संगीत में बनाया है नदीम श्रवण ने।

इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक भुवन मोहिनी का दूसरा भाग।

0: पिछली कड़ी में आपने सुना कि धार नगरी के महाराज द्युमत सेन ने राजकुमार विजयश्रवा और नर्तकी भुवन मोहिनी के बीच प्यार की बातें जानकर भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया। राजकुमार भुवन मोहिनी के वियोग में पड़ गया और उसके 3 महीने के अथक श्रम के बाद भुवन मोहिनी का एक सुंदर चित्र बनाया। एक दिन राजमाता से उसकी मुलाकात हो गई। राजमाता ने विजयश्रवा पर ताने कसे। फिर क्या था, विजयश्रवा महल छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में अरण्यक ने बताया, भुवन मोहिनी इंद्रप्रस्थ गई है, तो वह उससे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिया। क्या वो भुवन मोहिनी से मिल सका, जानने के लिए सुनते हैं धारावाहिक भुवन मोहिनी की दूसरी कड़ी।
1: आह, भुवन मोहिनी, ऐसा एक भी क्षण नहीं होता जब तुम मेरी दृष्टि के सामने नहीं होती। तुम मेरा परित्याग करके किस लोक को चली गई हो?
2: मैं स्वप्न लोक की छाया हूँ राजकुमार, एक छलावा बनकर तुम्हारे जीवन में समाई हुई हूँ। तुम मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। मेरा चिंतन करना भूल जाओ। देखो, मेरे कारण तुम्हारे जप तप और जीवन के सारे शुभ कार्य व्यर्थ हो जाएंगे। मैं तो वायु तरंगिणी बनकर अंतरिक्ष में अशांत होकर उड़ती फिरती हूँ। किसी श्रापवश अप्सरा का जीवन पाकर भूलोक में अवतरित हुई हूँ। फिर भी मुझे अपने पूर्व जीवन का पूर्ण स्मरण है राजकुमार। मैं तुम्हारी भी पूर्व जीवन से परिचित हूँ। तुम देवलोक से भ्रष्ट होकर भूलोक में आए हो। वहां भी तुमने मुझे प्राप्त करने का प्रयास आरंभ किया तो देवगण तुमसे असंतुष्ट हो गए। तुम्हारे आकर्षण में मैंने भी देवताओं की अवहेलना आरंभ कर दी और देवता हम दोनों से रुष्ट हो गए और देवलोक से निष्कासित कर दिया। तुमने राजराजेश्वर के महल में जन्म लिया और मैंने अपने पूर्व जीवन के अनुकूल एक अप्सरा के गृह में, इसलिए अपने पूर्व जीवन में लौट चलने के लिए आवश्यक है कि मेरे रूप की ज्वाला में विदग्ध ना बनो। जाओ जाओ ना, मुझे सर्वदा के लिए भूल जाओ।
1: भुवन मोहिनी, तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हो? कैसा था यह दिवा स्वप्न, एक मृग मरीचिका के सदृश? क्या वास्तव में भुवन मोहिनी मेरे जीवन में छलावा ही सिद्ध होगी? ये कौन था जो स्वप्न के बहाने पूर्व जन्म की कथा का स्मरण दिलाकर शून्य में विलीन हो गया? क्या वास्तव में इस स्वप्न की बातें सत्य हैं? क्या यह सच है कि भुवन मोहिनी पूर्व जन्म में एक अप्सरा और मैं देवलोकवासी था? क्या नारी का आकर्षण देवत्व के पद से भ्रष्ट करके भूलोक का जीवधारी बनाता है? क्या भूलोक में नारी का आकर्षण भ्रष्ट नहीं करता? यदि करता है तो फिर इस जन्म के पश्चात मुझे और क्या बनना पड़ेगा? देवत्व से प्रतीत होने पर मनुष्यत्व का पद मिला, किंतु यदि मनुष्यत्व से भी पतित हुआ तब किस योनि में जाना होगा? आह, मैं क्या करूं? कौन मेरे संदेहों का निराकरण करेगा? अरण्यक, अरण्यक!
3: युवराज, क्या हुआ?
1: क्या बात है, रथ रुका हुआ क्यों है?

0: हाँ, तुम सो।
1: क्या बात है रण्यक, कोई चिंता की बात है क्या?
0: नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा ना, तुम सो जाओ।
1: झपकी आई ही थी कि तुमने जगा दिया। रात्रि में फिर से यात्रा करनी है?
0: रात्रि में नहीं, संध्या काल में ही।
1: संध्या काल में ही? तब तो चलो बात ही करते हैं। बताओ क्या बात हो गई?
0: सारथी, तुम्हें पता है कि हमारे स्वामी कहां जा रहे हैं?
1: हाँ, तुम ही ने कहा था कि इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं।
0: क्यों जा रहे हैं ये बताओ।
1: तुम ही ने मना किया था, अब तुम ही पूछ रहे हो। फिर भी बताता हूं, जहां तक मैं जान पाया हूं, भुवन मोहिनी को निकाले जाने के कारण ही राजकुमार भी राज्य को छोड़ रहे हैं, सम्राट और साम्राज्ञी को मानसिक कष्ट देने के लिए।
0: तुमने सही जाना, परंतु सारथी, अब तुमसे कहूं कि ना कहूं, बिना कहे भी तो नहीं रहा जाएगा।
1: आराम मिलेगा, कहकर देखो।
0: सारथी, देखो तो कितना नैतिक पतन हो गया है। एक क्षुद्र नर्तकी के लिए युवराज का सिंहासन त्याग देना, कौन इसे उचित कहेगा?
1: बात तो ठीक कही तुमने, परंतु हो सकता है भुवन मोहिनी का मूल्य युवराज अधिक समझते हो राज सिंहासन की तुलना में।
0: छी, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? यह तो घोर सर्वनाश है, घोर सर्वनाश। राज राजेश्वर का भौतिक सुख त्याग कर रूप की वासना में जीवन को होम कर देना निराह मोह नहीं है तो क्या है? सारथी, तुम मेरी सहायता करो।
1: कैसी सहायता?
0: किसी भी प्रकार से राजकुमार को पतन की गर्त में जाने से हमें बचाना होगा,
1: हमें?
0: वरना सम्राट द्युमत सेन के बाद राज सिंहासन का भगवान ही स्वामी है। सोचो, अगर सम्राट द्युमत सेन के बाद युवराज सिंहासन पर न बैठे तो साम्राज्य का क्या होगा?
1: हाँ,
0: एक राजा के बिना देश कैसे चलेगा? बोलो। हे भगवान, मैं तो सोच के ही परेशान हो गया। पश्चिम और उत्तर से शक और हूण जातियां आक्रमण कर देंगी, जिसका सामना छोटे छोटे राज्य नहीं कर सकेंगे। परिणाम क्या होगा ज्ञात है, परतंत्रता। राष्ट्र की प्रजा असहाय की तरह लूटी जाएगी। सीमा प्रांत की असहाय नारियां विजेताओं की विलास का साधन बन जाएंगी। राष्ट्र की पतिव्रता देवियां कुल कलंकनी कहलावेंगी सारथी, और विश्व की सर्वश्रेष्ठ नारियां भुवन मोहिनी की ही भांति तुच्छ बनकर राष्ट्र के सर्वनाश का कारण बनेंगी।
1: तब क्या हो रण्यक?
0: तुम मेरी सहायता करो।
1: कैसे?
0: सुनो, इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर इससे पहले कि युवराज और भुवन मोहिनी की भेंट हो, हम उससे मिलकर सब कुछ बता दें।
1: किससे मिलकर?
0: अरे भुवन मोहिनी से।
1: उससे क्या होगा? भुवन मोहिनी विजय श्रवा को भुला देगी।
0: अवश्य, उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करना होगा। यदि वो सबके लिए अपने सुखों का त्याग कर सकी तो अच्छा ही है, अन्यथा राष्ट्र पर आने वाली विपत्ति को हटा देने के लिए आवश्यक होगा भुवन मोहिनी का वैयक्तिक बलिदान।
1: तात्पर्य?
0: यह मैं नहीं जानता, किंतु इतना तो मैं कह सकता हूं कि भुवन मोहिनी स्वयं राष्ट्रहित को प्रधानता देगी। देना भी चाहिए, राष्ट्र का हित सर्वोपरि है सबके लिए।
1: तो फिर साफ साफ बताओ हमें क्या करना होगा।
0: जैसे भी संभव हो भुवन मोहिनी से विजय श्रवा को अलग रखने का प्रयास करना होगा।
1: अरण्यक, संध्या हो गई है।
0: होने दो।
1: अरे हमें प्रस्थान करना है।
0: अरे हां, परंतु ध्यान रखना इस बात का। चलो, दैनिक चर्या करके प्रस्थान किया जाए।
1: हाँ हाँ, चलो
2: चलो चलो, शीघ्रता करो। युवराज, प्रस्थान की आज्ञा है ना?
3: हाँ हाँ, शीघ्रता करो।
2: जो आज्ञा। चलो चलो।
0: मित्र, सो रहे हैं, सो जाइए।
4: कहाँ जा रहा हूं, किस उद्देश्य से जा रहा हूं, क्या होगा परिणाम?
5: केवल सर्वनाश, अधिक कुछ नहीं।
4: हाँ, सर्वनाश?
5: हाँ, क्या तुम सचमुच उस प्रणयिनी को प्यार करते हो जो तुम्हारी दृष्टि से निर्वासित है?

0: हाँ, क्या तुम्हें भुवन मोहिनी के अक्षय यौवना होने पर विश्वास है?
1: हाँ,
0: क्या तुम्हारा आज वाला अनुराग रंजित हृदय अपरिवर्तनशील है?
1: हाँ,
0: क्या उसकी रूप की झांकी आज जैसी कल भी रहेगी विजयश्रवा? क्या दो दिन में फूल की तरह मुरझा जाने वाला सौंदर्य अपनी सहस्त्र किरण कांति से तुम्हारी रंगीली वासनाओं को चमकाता रहेगा? क्या रुग्णावस्था झुलसकर इस सौंदर्य को कुरूप न बना देगी? क्या बुढ़ापे में आज का स्निग्ध मनोरम और आकर्षक शरीर झुर्रियों की लटकन से घृणित वृत्तियों को न उकसाएगा? क्या स्वयं तुम भी आज की ही भांति तरुण, स्वस्थ और बलिष्ठ रहोगे? बंद करो ये प्रश्नों की श्रृंखला। अरे, जीवन स्वयं ही अनित्य है, तो फिर भुवन मोहिनी का सौंदर्य कैसे अनित्य नहीं होगा?
2: सब कुछ नश्वर है, सब कुछ अनित्य है। यह जीवन अनित्य, यह शरीर अनित्य, यह सृष्टि अनित्य और इस सृष्टि के सारे व्यापार अनित्य।
0: किंतु इस अनित्यता का भय ही तो सत्यम शिवम सुंदरम की खोज में जीव को अग्रगामी बनाता है। इस अनित्यता में ही तो जीवन का शाश्वत सत्य है। उससे इस अनित्य शरीर को क्यों वंचित रखा जाए? इस लघु जीवन में पानी की बूंद बूंद की भांति जहां सारे व्यापार स्वयं प्रेरित होकर चल रहे हैं, मैं बाधा क्यों दूं? जब परिवर्तन ही सृष्टि का अटल नियम है, तब भुवन मोहिनी का मधुमय यौवन कैसे स्थायी रहेगा?
2: इसीलिए तुम्हें शीघ्रता है।
0: हाँ, इसीलिए, ताकि इस अनित्य यौवन को स्वप्न की भांति विलीन होने के पूर्व भोग लूं। अन्यथा फिर तो केवल पश्चाताप की घड़ियां ही शेष रह जाएंगी। यौवन को यौवन की ही प्यास होती है, यौवन को यौवन के जल से ही तृप्त करना होता है, मात्र यौवन के जल से।
3: युवराज, आप इंद्रप्रस्थ पहुंचने वाले हैं।
0: शुभ सूचना दी तुमने अरण्यक। अच्छा बताओ, तुम सब लोग मुझे यहां क्या कहोगे? स्मरण है ना?
3: अवश्य स्वामिन, हम लोग यहां पर आपको श्रेष्ठीवर कहकर पुकारेंगे।
0: श्रेष्ठीवर? हाँ, मैं श्रेष्ठीवर हूं यहां इंद्रप्रस्थ में।
3: मित्र, कितने दिनों बाद आपकी उन्मुक्त हंसी सुनी, बहुत अच्छा लगा।
0: सुनो अरण्यक, सारथी को कह दो कि रथ को यमुना के तटवर्ती किसी सुरम्य उपवन में छिपा कर रख दे।
3: अरे सुनो सारथी, रथ को यमुना तट पर किसी सुरम्य उपवन में छुपा कर खड़ा करना।
4: ठीक है रण्यक।
3: आइए युवराज। अरे वाह युवराज, आपने वस्त्र बदल लिए, आप तो विशुद्ध श्रेष्ठीवर ही लग रहे हैं।

0: साधु साधु, अरण्यक कितना सुंदर वन है। अपने रथ को यहीं पर कहीं खड़ा करवाओ, लगता है कोई आ रहा है। अरण्यक, उससे पूछो किसका उपवन है ये।
1: अरे भाई सुनो, कौन हो तुम?
2: उपवन का माली हूं महोदय, आप लोगों का परिचय?
1: बस ये समझ लो कि हमारे मालिक बहुत बड़े श्रेष्ठी हैं।
2: श्रेष्ठी हैं?
1: हाँ, वो व्यापार के उद्देश्य से इस नगरी में आए हैं। अच्छा, इस सुंदर उपवन के स्वामी के बारे में तनिक बताओ।
2: ये उपवन चंद्रवंशी महाराज आदित्य सेन का है, जो इंद्रप्रस्थ से मिले जुले एक बड़े भूभाग के महाराजा हैं, और आजकल इस उपवन का उपयोग उनकी एकमात्र राजबाला चंद्रहासिनी के मनोविनोद के लिए किया जाता है।
1: अच्छा, तो क्या अपरिचितों का निवास निषेध है?
2: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, किंतु ये आवश्यक है कि उपवन में निवास करने वाला व्यक्ति या तो इंद्रप्रस्थ से दूर का निवासी हो, या फिर वो किसी राजवंश का हो, अथवा किसी श्रेष्ठ वंश का लक्ष्मी पुत्र हो। साधारण लोग यहाँ नहीं रह सकते।
1: भला ऐसा क्यों?
2: इसलिए कि यदि उपवन की कोई हानि हुई तो दंड स्वरूप सहस्त्र मुद्राएं देनी पड़ती हैं।
1: अच्छा।
2: और ये तो तुम जानते ही होगे कि ये दंड कोई राजवंशी या श्रेष्ठी ही दे सकता है।
1: हाँ, ये तुमने सच कहा। सुनो, तनिक इधर तो आओ।
3: क्यों?
1: ये लो 50 स्वर्ण मुद्राएं।
2: 50 स्वर्ण मुद्राएं किस लिए?
1: अरे तुम्हारा पुरस्कार। और विश्वास मानो, हम लोग इस उपवन की एक पत्ती को भी नष्ट नहीं करेंगे, और यदि भूल से ऐसा हो भी गया तो तुरंत उसका दंड भी भर देंगे।
2: मुझे विश्वास हो गया। जानते हो,
1: हाँ,
2: अभी हाल ही में राजकुमारी यहां से लौट कर गई हैं।
1: अच्छा,
2: ये जो पर्णकुटी देख रहे हो ना,
1: हाँ,
2: विशेष रूप से उन्हीं के लिए बनवाई गई थी।
1: अरे वाह वाह, ये पर्णकुटी तो किसी राजप्रासाद से कतई कम नहीं है।
2: बिल्कुल, और इसकी सारी सजधज अभी भी ज्यों की त्यों है।
1: सुनो माली, क्या हमारे मालिक इस पर्णकुटी में निवास कर सकते हैं?
2: तुम्हारे मालिक श्रेष्ठ वंशी है ना?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: परंतु वो कब तक रहेंगे यहाँ?
1: माह दो माह। अब चिंता मत करो, जब चाहोगे चले जाएंगे।
2: तब तो ठीक है, आप लोग अपनी व्यवस्था कर लीजिए, किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो मुझे बताइए। हाँ,
1: अवश्य श्रीमान, अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अरण्यक, तुमने अद्भुत कार्य किया। इंद्रप्रस्थ में ऐसे सुंदर आवास की मैंने कल्पना भी नहीं की थी।
1: आपकी प्रसन्नता ही मेरे जीवन का ध्येय है मित्र। अब आप विश्राम करें और हम लोग शेष व्यवस्थाएं करते हैं।
0: हाँ अवश्य।
1: चलो, युवराज तो विश्राम करने गए, ये सारथी कहाँ गया? सारथ, सारथ,
4: मैं यहां घोड़ों के पास हूं अरण्यक।
1: हाँ हाँ, देखो हम लोग इंद्रप्रस्थ आ गए।
4: रथ को मैं हिलाया हूं।
1: हमें अब अपनी योजना पर अमल करना है।
4: वो भी मुझे स्मरण है।
1: राष्ट्रहित के लिए किसी भी स्थिति में राजकुमार विजय शर्मा से नर्तकी भुवन मोहिनी का मिलाप नहीं होना चाहिए।
5: अधिक तेज मत बोलो, घोड़े उछलने लगेंगे।
1: अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
6: महाराज आदित्य सेन की जय हो।
7: आइए महामाते ओंकार देव, बैठिए।
6: क्या बात है महाराज, आप कुछ चिंतित दिख रहे हैं। क्या राजकाज के बारे में चिंतित हैं?
7: नहीं महामाते, आपके होते हुए हमें राजकाज की चिंता कभी नहीं हुई और न होगी, परंतु हमें राजकुमारी चंद्रहासिनी के विवाह की चिंता है। उनके लिए कोई उपयुक्त वर न मिलना हमारे लिए तनाव का कारण बना है। कोई भी राजवंशी राजकुमार चंद्रहासिनी के रूप गुण विद्या बुद्धि के अनुरूप ठहर ही नहीं पाता।
6: महाराज क्षमा चाहता हूं आपको बीच में रोकने के लिए। आपके यमुना तट स्थित उपवन में धारा नगरी से आए हुए एक श्रेष्ठी वर ठहरे हुए हैं।
7: तो क्या हम अपनी राजकुमारी का विवाह एक श्रेष्ठी से करेंगे?
6: क्षमा चाहता हूँ महाराज, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई।
7: हाँ बोलिए।
6: उस श्रेष्ठी के अंग प्रत्यंग की कमनीयता, उसका रूप गुण प्रभाव और आकर्षण, उसका तेजस्वी ललाट, विशाल नेत्र, वृषभ कंध, उन्नत ग्रीवा, चौड़ा वक्षस्थल, केहरी कटी, उसके चक्रवर्ती राज राजेश्वर होने के संकेत देते हैं।
7: अच्छा,
6: वो श्रेष्ठी आसपास के ग्रामीण जनों में कौतूहल का विषय बना हुआ है।
7: यदि ऐसा है तो उसे पहचानना कोई कठिन काम नहीं है। यह काम भुवन मोहिनी कर सकती है।
6: भुवन मोहिनी,
7: जिसे धारा महाराज ग्युमत सेन ने निर्वासित कर दिया था और हमने अपने यहाँ शरण दे रखी है।
6: अच्छा अच्छा, वो नर्तकी?
7: हाँ वही, भुवन मोहिनी धारा नगरी के सम्राट ग्युमत सेन की प्रमुख गायिका रही है और वो वहाँ के प्रधान सामंतों और श्रेष्ठियों को अवश्य पहचानती होगी।
6: अवश्य देव, यह कार्य उसके द्वारा सरलता से कराया जा सकता है।
7: भरत।
0: आज्ञा महाराज।
7: जाकर भुवन मोहिनी से कहो कि हमने उन्हें याद किया है।

0: जो आज्ञा।
1: परंतु महामात्य, यदि वो कोई राजवंशी हैं, तो इस तरह सृष्टि बनकर आने की क्या आवश्यकता है? कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है?
2: यह बात विचारणीय है महाराज, परंतु इसका निराकरण भी उसकी पहचान होने के बाद ही किया जा सकता है।
0: महाराज, देवी भुवन मोहिनी उपस्थित होने की आज्ञा चाहती हैं।
1: हाँ हाँ, आज्ञा है।
0: आइए देवी।
3: महाराज आदित्य सेन को प्रणाम।
1: नर्तकी भुवन मोहिनी, राजसभा तुम्हारे बिना सुनी ज्ञात होती है। तुम्हें सर्वदा मेरे आने के पूर्व ही राजसभा में उपस्थित होना चाहिए।
3: अपराध क्षमा हो देव, दासी के अस्वस्थ होने के कारण ही आज अनुपस्थित होने का अपराध बन पड़ा है। भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी।
2: नर्तकी, इधर आओ।
3: प्रणाम महामात्य।
2: देखो नर्तकी, क्या तुम्हें ज्ञात है कि यमुना के किनारे पर अवस्थित राजोद्यान में धारा नगरी का कोई व्यक्ति विश्राम कर रहा है?
3: धारा नगरी का?
2: हाँ, धारा नगरी का।
3: मुझे ज्ञात नहीं है महामात्य।
2: अरे, तो क्या तुम अभी राजकुमारी के साथ उस उपवन में निवास नहीं कर रही थी?
3: देव, उस समय कोई नहीं था।
2: तो ठीक है, कल वहां जाकर गुप्त रूप से पता लगा कर आओ कि उस राजोद्यान में स्थित पर्णकुटी में ठहरने वाला कौन है। यद्यपि वह अपने को धारा नगरी के सर्वश्रेष्ठी का पुत्र बताता है, परंतु हमें शंका है, उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी चाहिए।
3: जो आज्ञा महामात्य, कल राजकुमारी दीपरागिनी सिद्ध करने वहां पुनः जाने वाली है, मैं भी चली जाऊंगी। महाराज, राजकुमारी ने अपने पिछले निवास काल में दीपरागिनी का विशेष अभ्यास किया था महाराज, कल उसी का महोत्सव है।
1: अच्छी बात है,
2: किंतु वहाँ उस अपरिचित व्यक्ति के होते हुए क्या बाधा उत्पन्न नहीं होगी नर्तकी?
3: नहीं महामात्य, अब वो पर्णशाला में नहीं राजोद्यान के प्रासाद में अपना कार्य करेंगी, और जहाँ तक संभावना है वो व्यक्ति पर्णकुटी में ही रुका होगा।
2: हाँ हाँ, पर्णकुटी में ही रुका है, तुम उसके बारे में पूरी जानकारी ले आना।
3: जी महामात्य।
1: भुवन मोहिनी, चलो, माना कि आज तुम कुछ अस्वस्थ हो, फिर भी तुम्हारा नृत्य और गायन देखे बिना हम भी अस्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए चलो अपना नृत्य और गायन प्रस्तुत करो, परंतु उसके बाद महामात्य ने जो आदेश दिया है उसको अवश्य पूरा करना।
3: जो आज्ञा देव।
4: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आपने सुना धारावाहिक भुवन मोहिनी का दूसरा भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
5: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उड़ीसा के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रीड रूट पर आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष विश्व भर में लगभग 2,500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कल जबलपुर में होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों, विकासखंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। नीट परीक्षा के लिए भोपाल में कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 21 जून को 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षार्थियों से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि नीट परीक्षा के चलते शहर के कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रदेश में प्री मानसून के चलते आज 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच अब से कुछ देर बाद 1:30 बजे से चेन्नई में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब महिलाओं के लिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

0: बारिश की बूंदें भले ही कितनी छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे प्रयास चाहे कितने ही छोटे हों, जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इस सुंदर से विचार के साथ हाजिर हूँ मैं कल्पना मिश्रा, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा के साथ। स्वीकारिए मेरा नमस्कार। बहनों, यूं तो सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं लेकर आती है, जिससे उनका समाज में स्तर ऊंचा हुआ है। वैसे ही एक योजना पारित की गई जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक भी कहा जाता है, जो कि एक ऐतिहासिक भारतीय कानून है और ये लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी कि एक तिहाई आरक्षित करता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही हैं, तो मैं समझता हूं कि वह समाज, वह राष्ट्र प्रगति कर रहा है। उनकी ये सोच साकार हुई और ये विधेयक बनाया गया। बहनों, इसकी विशेषताओं पर बात करें तो यह कानून सीधे तौर पर लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही कुछ आरक्षित सीटों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसकी जो समय सीमा है वो 15 वर्षों के लिए प्रभावी होगी, परंतु इसके बाद इसे आगे बढ़ाने के लिए संसद द्वारा नया निर्णय लिया जा सकता है। बहनों, यह कानून परिसीमन प्रक्रिया और नई जनगणना के बाद लागू होता है। यह संविधान संशोधन विधेयक सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान पेश किया गया था। दोनों सदनों द्वारा भारी बहुमत से पारित होने के बाद यह 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया और भारत सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है, जो कि महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। बहनों, आज हैं हमारे बीच संध्या तिवारी जी, जो कि शांति कुंज हरिद्वार महिला मंडल की कार्यकर्ता समाज सुधारक हैं, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही हैं। तो आइए इसी विषय पर इनसे बातचीत करते हैं।
1: आपका हमारे कार्यक्रम महिला सभा में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: आप इस संस्था से कब से जुड़ी हैं और इसका उद्देश्य क्या है, वो आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: इस संस्था में जुड़ने का सौभाग्य बचपन से ही प्राप्त हुआ। मेरे माता पिता गायत्री परिवार से जुड़े और उन्होंने मुझे प्रेरणा के रूप में इस गायत्री परिवार के साथ जोड़ा। संस्था का उद्देश्य मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण है। वास्तव में देखा जाए तो धरती का देवता मनुष्य ही है, पर उसके पूर्व मनुष्य मनुष्य बने और मनुष्य से ऊपर उठ करके देवता बन जाए, इसके लिए ये ऋषि प्रणीत योजना है, जिसे गायत्री परिवार के नाम से जाना जाता है, युग निर्माण योजना के नाम से जाना जाता है और विचार क्रांति अभियान के नाम से जाना जाता है। युग निर्माण योजना कहने का तात्पर्य यह है कि इस योजना में मूलभूत 3 सूत्रों को लिया, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। इन तीनों के निर्माण से ही विश्व निर्माण संभव है, जो हमारी संस्कृति में एक नारा है, वसुधैव कुटुम्बकम, और उसके पूर्व आत्मवत सर्वभूतेषु। इसी को हमारा मिशन कहता है, आत्म कल्याण से लोक कल्याण। आत्मवत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, पहले अपनी आत्मा का के उत्थान के साथ। यदि केवल आत्मा के उत्थान के साथ बहुत लोग गुफा कंदरा में बैठ कर के तपश्चर्या इत्यादि करते हैं, वो आवश्यक है, लेकिन समाज में भी एक प्रकार की तपश्चर्या होती है। समाज के लिए अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर व्यक्ति जब तक लोक कल्याण या परमार्थ भाव के साथ नहीं चलेगा, तो ये समाज का उत्थान संभव नहीं है। मिशन का ये उद्देश्य है। धरती पर स्वर्ग का अवतरण से तात्पर्य कि धरा एक सुखी, समृद्ध, सानंद, उत्साह पूर्ण जीवन जीने की स्थिति में प्रत्येक मनुष्य रहे। धरती का स्वर्ग का अवतरण का तात्पर्य यह है। ये दोनों सूत्र लेकर के मिशन चल रहा है। वैसे देखा जाए तो मिशन का बड़ा व्यापक उद्देश्य है। लघु से विभू तक की यात्रा ये मिशन करने की प्रेरणा देता है। कि छोटे से बड़े कैसे बने, और छोटे छोटे जीव जंतुओं से लेकर के जो हमें दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म स्तर के जीव जंतुओं से लेकर के ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, सारा का सारा कैसे उत्कृष्ट बने, इन विचारों को लेकर के ये मिशन चल रहा है।
1: जी दीदी, आपके विचार बहुत ही महान है। तो आप हमें ये बताइए कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली?
2: जैसा कि आपको गायत्री परिवार के बारे में जानकारी होगी, गायत्री परिवार ने नारी जागरण का बीड़ा उठाया, और उस नारी जागरण के बीड़े के साथ जिसको हम महान सत्ता ने इस बीड़ा को उठाया, उसे हम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी बोलते हैं, उन्होंने ऐसे समय पर नारियों को के उत्थान का मौका दिया जब नारियां केवल चार दीवारी के अंदर बंद थीं, शोषित थीं, दमित थीं, उनको कहीं स्वतंत्र जीने का या अपने आप को उठाने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। ऐसे समय पर परम पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया कि हमको नारियों को, महिलाओं को ऊपर उठाना है, और उन्होंने उसके लिए जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो पहले कभी था, आदिम जमाने में, आदिकाल में ये था कि हमारे यहाँ स्त्री पुरुष दोनों बराबर थे, महिलाएं भी वो सारा काम करती थी जो पुरुष करते थे, पर वो बीच का काल जो हमारा गुलामी का काल आया, परतंत्रता का काल आया, उस काल में महिलाओं का पतन हुआ, उनके जीवन का पतन हुआ, और एक प्रकार से देखा जाए तो पूरी तरह वो घर की चार दीवारी में बंद करके उन्होंने एक प्रकार से उनका जीवन ही बंद हुआ। ऐसे समय पर परम पूज्य गुरुदेव ने बहनों को लेकर के, नारियों को लेकर के, छोटी छोटी कन्याओं को लेकर के एक क्रम शुरू किया, उन कन्याओं को प्रशिक्षण दे करके जिन्हें उन्होंने देवकन्या नाम दिया। देवकन्याओं के माध्यम से पूरे देश में जन जागरण का क्रम संपन्न कराया। वो देवकन्याएं साधना भी करती थीं, और उस साधना कर श्रेष्ठ विचारों को जन जन तक फैलाने का काम यज्ञ माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से करती थीं। एक बार वो देवकन्याओं की टोली आई, उन देवकन्याओं की टोली के साथ मुझे रहने का, बातचीत करने का, उनको देखने का, निकट से देखने का मौका लगा, और मेरे अंदर प्रेरणा जागी कि मैं भी ऐसा ही काम करूंगी।
1: जी जी जी।
2: और उस प्रेरणा के साथ मैंने इस मिशन को और पक्के से चुना, और चुन करके गुरुदेव माता जी को अपना गुरु बनाया, इस संस्था को अपना लक्ष्य बनाया, और लक्ष्य बना करके इस संस्था में मैं कितना मैं कर पाई मैं इसको नहीं कह पाऊंगी, लेकिन प्रयास मेरा ये कि इस संस्था में मैं पूरी तरह अपने आप को झोंक करके काम करती रही, और अभी तक मैं काम कर रही हूँ।
1: जी जी जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दीदी, आपको हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो आखिर में आप अपने सुंदर विचार उन तक पहुँचाएंगी तो हमें बहुत खुशी हो।
2: सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमें आप तक पहुँचने का मौका मिल रहा है। ये अपनों से अपनी बात है, कई बार अपनों से अपनों तक पहुँच नहीं पाते, इससे ये सशक्त माध्यम है। इस सशक्त माध्यम का मौका मुझे मिला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। पर एक निवेदन तो मैं करना चाहती हूँ कि हमारा देश भारत, ये देश सोने की चिड़िया और जगत गुरु रहा है। हम सबको मिलकर के, चूँकि उस क्रम में एक प्रकार से देखा जाए देश पटरी पर आ चुका है, जगत गुरु बनने की पूरी संभावनाएं, पूरे आसार, पूरी किरण दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा हम लोग मिलकर के इस दिशा में हम अपने देश को धक्का लगाएं। और आध्यात्मिक देश होने के नाते हम सब अपनी साधना को या अपने आध्यात्मिक या आत्मिक उत्थान को देखते हुए हम अपने आप को साधना की ओर ले जाएं, क्योंकि हमारा देश साधना की धुरी पर खड़ा है। आपको एक निवेदन और करना चाहूंगी, जब हमारा देश परतंत्र था तो दो धड़े काम कर रहे थे, एक धड़ा बाहर जो सीधा देश की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में भाग ले रहा था, और एक धड़ा अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप में काम कर रहा था, जिन्हें हम ऋषि कह सकते हैं, जिन्हें हम साधक कह सकते हैं। एक बल था साधना का बल, उन लोगों ने, ऋषियों ने, साधकों ने, सिद्धों ने, संतों ने, तपस्वियों ने साधना का बल देश को दिया, और उस बल के सहारे लोगों ने प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ करके देश को आजाद किया। वही क्रम हम सब मिलकर के करें, अपने साधना के बल को मजबूत करें, अर्थात हम साधना की धुरी पर खड़े होकर के अपने आप को अपना निर्माण करें, व्यक्ति निर्माण जिसको कहा है, व्यक्ति निर्माण करें, और साधना के बल पर ही यदि हमारा स्वयं का निर्माण हो तो परिवार निर्माण सहज हो जाता है। हम बने तो हमारा परिवार बना, व्यक्ति एक इकाई है, परिवार उस इकाई के सहारे परिवार बनता है, और इस परिवार के सहारे समाज बनता है, और समाज के सहारे पूरे विश्व का निर्माण होता है। तो निवेदन ये है कि हम मिल करके इस दिशा में सार्थक प्रयास करें। और सार्थक प्रयास कर, पूरी आशा और पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में हम उस विश्व में जी सकेंगे, धरती पर जहाँ स्वर्ग दिखाई देगा उस स्वर्ग में हम सब सुखी सानंद समृद्ध आत्मीय भाव से जी सकेंगे, जी। अपनत्व भाव से जी सकेंगे, एक दूसरे के साथ जी सकेंगे।
1: दीदी आप एक पंक्ति में अपनी संस्था के बारे में कुछ बताइए।
2: एक पंक्ति में यदि संस्था के बारे में कहा जाए तो एक ही देश है मनुष्य का कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। दूसरा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। संस्था केवल हर व्यक्ति से हर मनुष्य से यही चाहती है।
1: दीदी आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और साथ ही इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं से साझा की, हमें भी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका, नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: रास्ते मुश्किल नहीं सोच कमजोर होती है, रास्ते मुश्किल नहीं सोच कमजोर होती है, इरादा मजबूत हो तो मंजिल भी झुकती है।

बहनों, महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में है, मतलब कि कोई ऐसा काम उनसे अछूता नहीं है जिसमें उनकी भूमिका ना रही हो, और सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इस काम में। अब जैसे एक और योजना है, विज्ञान ज्योति योजना। यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक समानता लाना है, जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है और लड़कियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और मैथ में शिक्षा और कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम आसपास के सरकारी स्कूलों की छात्राओं को विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रति प्रेरित करेगी और उन्हें जानकारी देगा, और इसका उद्देश्य कक्षा 9 से कक्षा 12 तक मेधावी छात्राओं पर ध्यान केंद्रित करना, विशेष रूप से ग्रामीण और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं पर, ताकि वैज्ञानिक क्षेत्रों में लैंगिक असमानता को कम किया जा सके। यह कार्यक्रम की विशेषता यह भी है कि यह वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है, मतलब प्रमाणित तथ्य के आधार पर समस्या का समाधान करना, कैरियर के अवसरों को बढ़ावा देना, जैसे लड़कियों को जेई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, साथ ही साथ अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाता है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का पूरक माना गया है। बहनों, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम इतना प्रभावशाली साबित हो रहा है कि कक्षा 11वीं और 12वीं में विज्ञान विषय चुनने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी है। गणित और विज्ञान विषय में रुचि बढ़ने के साथ साथ इन विषयों पर समझ बेहतर हुई है। हम देख रहे हैं कि जेई और नीट और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी है। लड़कियों में इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में कैरियर बनाने को लेकर और भी ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ा है। तो इस तरह यह योजना महिला उत्थान के लिए प्रभावशाली साबित हो रही है। अब आइए मनोरंजन की तरफ चलते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में प्यारा सा गीत, फिल्म है दो कलियां।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये हमारे आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत बन्ना गीत से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, और आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है, और आज आप सुन रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। पेश है परछन गीत, आवाज ज्योति तिवारी की।

ज्योति तिवारी के गाए इस सोहर गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रकाश तिवारी के गाए कुछ भजन और गीत।

अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मानंद की रचना, आवाज़ थी प्रकाश तिवारी की। आइए अब सुनते हैं प्रकाश तिवारी की आवाज़ में ये गीत। रचना नीरस की है।

0: कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है अंतराल का।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा।

0: पार्टी और फैमिली के साथ रील नहीं है।
1: जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है,
0: कंटेंट क्रिएशन भी है,
1: हिप हॉप भी है,
0: न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग।

0: जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड नई पुरानी बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है पेश है फिल्म संगीत

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम न रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।
2: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भी आपने सुना काला पानी फिल्म का गीत, शब्द रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत एस डी बर्मन का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और आज हम और कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म नया दौर से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत ओ पी नैयर का।

0: लता मंगेशकर के गाए गाइड फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर पश्चिम बंगाल के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य और समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। ये दिवस राज्य के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। आज के ही दिन इस बात की पुष्टि हुई थी कि पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने इस दिशा में डॉ.

0: श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अमूल्य भूमिका का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सांवेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2,935 करोड़ रुपए, लंबाई 48 किलोमीटर है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा
1: कि आज एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट जिसमें मुख्य रूप से दो बड़े शहर मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर, इसका जोड़ने वाला जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग है ग्रीनफील्ड मार्ग है, नए मार्ग का कुल लंबाई 40 किलोमीटर से ऊपर जो बनना है उससे हमारी इंदौर की दूरी ये काफी कम हो जाएगी। आने वाले समय में ये जो दो नगरों का साझा क्षेत्र है मेट्रोपोलिटन रीजन, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हमारा व्यापार, इसमें हमारी शिक्षा, इसमें हमारी चिकित्सा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सब विषय बड़े स्तर पर इनका निर्माण होने वाला है।
0: इसके पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन में कान डायवर्जन क्लोज एक्ट परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। यह परियोजना माँ क्षिप्रा के जल को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों और वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया है। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। वहीं नर्मदापुरम में परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला विकासखंड पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालय और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। भारत सरकार ने इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी है। आज भोपाल में बड़ा तालाब के बोट क्लब से लेकर टीटी नगर स्टेडियम तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और नागरिकों ने भाग लेकर स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का संदेश दिया। मध्यप्रदेश कैडर के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को इस वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉम्सन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश कर रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। पुस्तक के प्रधान संपादक पुरुषोत्तम श्रीवास ने बताया कि इसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषकों के आलेख शामिल हैं। समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ पांडे होंगे, जबकि अध्यक्षता विविध भारती मुंबई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक जी श्याम करेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि सामान्य मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 48 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़ा मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने 245 नर्सिंग कॉलेजों के सत्र 2021-22 के करीब 8,000 छात्रों की परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
4: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के देशों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उड़ीसा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
5: प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण

0: भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
1: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो ऑरेंज

0: शुरू होगा।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट UG पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में CCTV निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
3: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं और ये प्रूव हो चुका है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
1: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम अकेले हम अकेले तुम फिल्म के गीत से। आवाज शैली शैलेंद्र की, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत अनु मलिक का है। और पसंद करने वाले हैं आप सब डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से इसे पसंद कर रहे हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। इस गीत की एक पसंद हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास, मानिकपुरी दतरंगी से भागवत वर्मा और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया की। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म अकेले हम अकेले तुम का गीत आवाज़ शैली शैलेंद्र की।

अकेले हम अकेले तुम, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शैली शैलेंद्र की आवाज में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म यादों की बारात से। आवाज आशा भोसले और मोहम्मद रफी की है, शब्द रचना मजरू की और संगीत राहुल देव बर्मन का। और पसंद करने वाले श्रोता हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरव शर्मा। गौरीनगर इंदौर से इस गीत को पसंद कर रहे हैं आनंद कुमार कांबले, रेखा कांबले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कांबले। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। इस गीत की एक पसंद हमें मिली है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, श्रीमती सविता गवांडकर, सिद्धांत गवांडकर, प्रिंस एकांश गवांडकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवांडकर, श्रीमती वैशाली गवांडकर, श्वेता सुमित गवांडकर, कुमारी ध्वनि गवांडकर, परी की। आप सबकी पसंद का गीत सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म यादों की बारात से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश और मैं आपके साथ हूं आपका रेडियो मित्र दिनेश कुमार। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें मिली है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजपिए राधिका गजपिए बेबी अनिष्का और तन्मय गजपिए की। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहा है रोशन देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता देवांगन डिम्पल देवांगन। रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से इसे सुनना चाहते हैं जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जे एस नायक शोभा नायक समस्त डागला परिवार। औरंगाबाद से राजेश साबले शीतल राजेश राजदीप राजेश और राशि राजेश। आप सब सुनना चाहते हैं इंदिवर का लिखा गीत राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में। आवाज़ साधना सरगम और कुमार शानू की है और फिल्म है जुर्म।

जुर्म फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश और आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र दिनेश कुमार। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का है, आवाज़ लता मंगेशकर और मुकेश की और फिल्म है आस का पंछी। गीत को पसंद करने वाले श्रोताएं हैं धमनी किरवई से समीलाल धीवर, युवांश धीवर, कुणाल धीवर, गोविंद धीवर, मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। तो सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म आस का पंछी का गीत जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

और कार्यक्रम के अंत में सुनिए दम लगा के हईशा फिल्म का गीत, फिल्म का गीत पपोन की आवाज़ में। शब्द रचना वरुण ग्रोवर की और संगीत अनु मलिक का है। पसंद करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा।

0: अभी आपने सुना पपून की आवाज़ में दम लगा के हईशा फिल्म का ये गीत। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पिछले घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर पश्चिम बंगाल के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य और समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सांवेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2,935 करोड़ रुपए, लंबाई 48 किलोमीटर है। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला, विकासखंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है और आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेब पर सभा समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सांतकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुगली पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा दोपहर 3:55 पर। सांतकालीन सभा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:15 पर और रात 8:35 पर। पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ का

आठवां भाग आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर। सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण समय है 7:45। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष आप सुनेंगे रात 8 बजे। 9:30 पर आप सुनेंगे चित्र भारती और रात 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिए विवेक कर्माही का गायन। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय दोपहर के 3:02 हुए हैं। हमारी ये सभा मीडियम वेव पर अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे

0: इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस। और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है, जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर, जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे। और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह, और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर।

0: brothers and sisters of the country. A Bikasit Bengal, a Bikasit Bharat, a developed Bengal, a developed India. The resolve to make the country a Vikasit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world-class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow. Truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed. India will be the India of our dreams. And we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने, और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है. और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं. और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी. और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी. तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है. और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी. और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी, और उससे ज्यादा हो गई. और अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं. तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है. क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है.
0: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, टू मेक द इनकम्स ऑफ द फार्मर्स गो डबल एंड ट्रिपल. When the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal winning a historic election Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information and Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country in the district and block levels and gram panchayat levels with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav.

0: Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks. They are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुविंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना एवं प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री तनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
0: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode. We as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country develop. We have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendra, as the KVK's ICAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendras, Prime Minister, Primary Agricultural Cooperative Society and State District Gram Panchayat level, village level functions. With the release of the 23rd installment, the total disbursement under the scheme will exceed 4.4 lakh crore since its inception on the 24th of February 2019. Siddharth, we have to agree to the fact that yes, everything that might be happening around the globe, this promise never loses its importance.
1: बिल्कुल, तो अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इससे पहले हम सुन लेते हैं अंग्रेजी में समाचार।

0: asserted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
1: बिल्कुल अवैभ, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास, राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है, और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
0: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government, which will be a government of double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers, it's not just the money that is going to the farmers, it is also fertilizers, it is also the good quality of seeds, it is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुँचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्रीस्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एग्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
0: एब्सोल्युटली एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी। एंड आई वांट टू से दैट इट वोंट जस्ट बी द प्रोक्योरमेंट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन इन अ वेरी स्मूथ एंड अ वेरी फंक्शनल वे, बट द होल लाइन ऑफ क्रेडिट. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है और एक सरकार की एक जो नई पहल है, देश में जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव, किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है, उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आप आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉयल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो। आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, द वर्ड दैट यू हैव यूज्ड एंड यू हैड यूज्ड दिस वर्ड अर्लियर एज वेल, व्हिच इज सशक्त बनाना, दैट इज टू मेक द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एम्पावर्ड। हाउ डू यू मेक देम एम्पावर्ड एग्जैक्टली, दैट इज द क्वेश्चन, एंड दैट वाज प्रोबब्ली द क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही हैड इंट्रोड्यूस्ड द डिजिटल इंडिया मिशन। बिकॉज imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere completely disconnected what is going on in the world, but he knows and he trusts the government, and then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered, you are self-reliant. Aap aatmanirbhar hain ki aap swayam wo faisla le paaye, aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer, you can check your bank account, you can be a part of the Digital India mission. You can be a part of the banking system, of the financial system. You can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments who were just stuck because they did not have the credit support, they did not have the support of the raw materials, they did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing truck flying in the air?
1: Even इस तरह की जो तकनीकी है वैभव, आज से एक, जैसा कि तुमने कहा कि एक दशक पहले इस तरह की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते थे कि इसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हो. और डिजिटल, जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है. और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं.

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाज़ें उनको अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: समर्पण करेंगे।
2: The Honorable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal, Shri Arun Ravi, and the Chief Minister of West Bengal, Shri Suvendu Adhikari. People craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

0: पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति।
1: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति की उनको भेंट करते हुए और बंगाल में माँ दुर्गा का बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
0: और मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला
1: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को।
0: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई।
2: Siddharth, you should remember that this is not just a culmination of religion, it's not just a culmination of tradition, of legacy, of heritage, of sweetness, of all the things that now people are expecting from the government. The sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
1: और वैभव उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं।
3: वंदे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम। भारत केसरी लह प्रणाम। स्वामी प्रणवानंद लह प्रणाम। सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री गोटा पृथ्वीर सबचेये जनप्रिय नेता जिनी 140 कोटी भारतवासीर हृदयेर

0: আমরা স্মরণ করি আমাদের অতীত, উদযাপন করি আমাদের বর্তমান এবং একসঙ্গে গড়ে তুলি উন্নত, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভর পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।
1: और अब बंगाल की सांस्कृतिक विरासत की एक संक्षिप्त झलक। समय खूब कम, तार मध्ये आमरा तुले धरार चेष्टा करछी बांगलार समृद्ध संस्कृतिर किछु प्रतिफलन। शुरूते अवश्यई रवींद्रसंगीत परिवेशनाय पश्चिमबंग संस्कार भारतीर हुगली जिला शाखार शिल्पीरा। सुनते हैं रवींद्र संगीत।

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: The release of the PM Kisan Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
2: Ji haan, Pradhan Mantri, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 crore वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंग्स दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि। इमेजिन द लेवल एट विच दिस स्कीम इज नाउ ऑपरेशनलाइज्ड, इज फंक्शनल, इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग। And now, the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is, on stage, Prime Minister Modi.
3: Mahadev. Manch par virajman, Rajpal R.N. Ravi ji. यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है।

जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है, आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वहीं विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को
मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे और आज भी वो मूल्य, इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार,

सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ।

छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन, और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष का शुरू होए गए छे साथियों।

जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहायता

पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा, बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा।

ने कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के चार जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान

अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें, और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए, और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सब

0: मोबाइल फोन की लाइट चालू हो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat, developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस युववाणी कार्यक्रम में। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त अनुष्का
1: और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त वैष्णवी। चलिए आज का हमारा खास प्रोग्राम है फोन करे गीत सुने, जिसमें हम अपने पहले कॉलर से बात करते हैं।
0: हेलो फ्रेंड्स।
2: हेलो।
3: अरे नमस्कार मैडम जी, बहुत इंतजार करवाया तब कहीं जाके फोन
0: उसके
3: उठा।
0: लिए
3: मुझे
0: हम
3: तो
0: आपसे
3: लग रहा
0: बहुत बहुत माफी चाहते हैं सर, आपको इंतजार करना पड़ा। तो चलिए बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
3: हवा वो मैडम जी गाना सुनवा दो आप, हम पांच फिल्म का।
0: जी गीत के बोल बताइए सर।
3: वो मिथुन की है और गीत के बोल है, का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया, घर में गरीब के उठाई ले घूंघटा। और अमित कुमार जी की और लता जी की आवाज में है गाना।
1: जी बिल्कुल सर, हम आपको आपका पसंदीदा गीत जल्दी सुनवाएंगे। जब तक हम आपको आपका गीत सुनवाते हैं, तब तक हमसे कीजिए थोड़ी बातें। बताइए आपका नाम तो बताइए हमें।
3: अरे मैडम जी, बात करने के लिए तो तड़प रहा था, क्योंकि बात ही मायने रखती है, गाने तो एक बहाना होता है। और मैं बता दूं कि ना दिन को सुकून था और ना रात को सुकून, ये हमको आकाशवाणी इंदौर का जुनून था, और बात हो गई तो मिल गया सुकून था।
0: जी आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं सर अभी तक इतनी सारी चीजों में।
3: जी नाम बता दूं दीदी जान, क्योंकि बातें करते करते मैं अपना नाम ही भूल गया। तो नाम मेरा है ग्राम कल्पा, जिला सतना से हिंदुस्तानी कलाकार चांद मोहम्मद खान, प्रश्न मजनू दीवाना, ईडन गार्डन, अशोक वाटिका से बोल रहा।
0: तो सर अब आप मुझे ये बताइए कि आप और कौन से गाने के शौकीन हैं? हमें ये वाला गाना ना अभी मिल नहीं पा रहा है।
1: तो इसके अलावा कोई और आपका पसंदीदा गीत आप हमें बता सकते हैं?
3: गाना काम चोर का सुनवा दो, जो जल्दी से मिल जाए, बिल्कुल जो एकदम पॉपुलर हो रहा है और सदियों से सुनाई दे रहा है। तुझे संग प्रीत लगाई सजना हो रामा,
0: सजना हो रामा।
3: हाँ ये गाना तो बहुत चल रहा है नए अंदाज में और पुराने अंदाज में, तो ये काम चोर का सुनवा देना।
1: जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे आपका ये गीत।
0: चलिए सुनते हैं। ये भी नहीं।
1: चलिए हम अपने अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं।
4: नमस्कार।
1: नमस्कार,
4: मैं भी लाइन में खड़ा ही था दीदी
1: जी। मुझे अपना नाम बताइए सबसे पहले, और ये भी बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
4: धीरज जबारी बात कर रहा हूँ गुजरात से
1: जी,
4: और गाना सुनना है पंख होती तो उड़ाती रे, सेहरा फिल्म का गाना है, लता जी ने गाया है।
1: अच्छा बिल्कुल धीरज जी, हम आपको आपका पसंदीदा गीत सुनवाएंगे जरूर। तो हमें ये बताइए कि गुजरात में इन दिनों, अब क्योंकि बारिश आ गई है, बारिश का मौसम आ गया है, कैसा मौसम है इन दिनों गुजरात में?
4: मौसम सुहावना है और मोर अपने

0: अच्छे बारिश को बुला रहे हैं।
1: और मुझे ये बताइए कि जैसे गर्मी तो गुजरात में बहुत पड़ती है, वो तो हम सभी जानते हैं, तो अभी बारिश के कारण गर्मी में कुछ कमी हुई भी या फिर उतना ही वैसे ही गर्मी है?
0: थोड़ी राहत की सांस ली है लोगों ने, लेकिन बारिश की आशंका है कि बारिश आएगी, लेकिन बारिश के बाद जो गर्मी रहती है वो ज्यादा रहती है।
1: जी,
0: लेकिन
1: उमस वाली
0: ये
1: गर्मी।
0: प्रकृति का तीनों सीजन का हमें ख्याल करके जीना सीखना चाहिए, गर्मी से, ठंड से और बारिश से। तो
1: जी जी
0: हम सभी यानी लोग इस बारे में आदती हो गए हैं और हम आशा करते हैं कि बारिश आज या कल आ जाए
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: मोर
1: धीरज
0: भी
1: जी,
0: पुकार रहे हैं बारिश को।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपका ये पसंदीदा गीत।
0: धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोदी जी के कुछ जानकारी के कारण हमारा जो युववाणी प्रोग्राम है वो आज 5:30 बजे बहुत लेट चालू हुआ, तो इसीलिए आज का जो हमारा युववाणी है वो 6 बजे तक रहेगा।
1: जी चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ।
0: हेलो फ्रेंड्स,
2: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: जी
1: जी
0: हाँ, तो
1: हसीना
0: हमारी
1: जी,
0: एकदम लॉयल वाली लिसनर है, आप
1: जी आप
0: हमेशा
1: तो
0: कॉल करती
1: रेगुलरली हमसे बातें
0: हैं।
1: करती हैं, तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
2: फिल्म का नाम है शहंशाह, गाने के बोल है। हो

0: वो ये सुना दीजिए।
1: अरे वाह, आपकी आवाज तो बहुत ही अच्छी है। लगता है गीतों का बहुत शौक है आपको।
0: जी गाना गाने का बहुत शौक है।
2: अभी तक तो आपने कितने सारे गीत सुन लिए होंगे, मतलब बहुत ज्यादा आपको नॉलेज होगा गानों का तो, है ना?
0: बहुत ज्यादा, मतलब कंप्यूटर में जितने गाने रहते हैं उससे ज्यादा हमारे दिमाग की मेमोरी में रहते हैं मैम।
1: वाह, तो गानों का ही शौक है या फिल्में देखने का भी शौक है आपको?
0: फिल्में तो पहले देखते थे, अब नहीं देखते हैं, बस ये रेडियो से जुड़ाव है, लगाव है ज्यादा, तो रेडियो सुनते रहते हैं, फोन लगाते रहते हैं। तो
2: तो
0: नहीं, पर
2: सारे
0: नाम को नहीं,
2: प्रोग्राम
0: कार्यक्रम का
2: सुनते
0: संपूर्ण
2: हैं,
0: लगाते हैं।
2: आकाशवाणी के सारे प्रोग्राम सुनते हैं या फिर कुछ खास युववाणी ही?
0: नहीं, आकाशवाणी के सारे कार्यक्रम, क्योंकि हमारे लेटर भी शामिल होते हैं, देखो चॉइस टाइम भी सुनते हैं, मन भावन भी सुनते हैं, युवाणी भी सुनते हैं, FM आपकी पसंद भी सुनते हैं, सब सुनते हैं।
1: अरे वाह। तो लेकिन आपने अभी हमें बताया कि पहले आप फिल्में देखा करती थी, अब नहीं देखती, तो इसकी कोई वजह कि अब फिल्में पसंद नहीं आती या आपकी चॉइस ऑफ फिल्में अब बनती नहीं है?
0: नहीं वो बात नहीं मैडम, जैसे हम पहले घर पे रहते थे, अभी जॉब करने

0: जाते हैं तो टाइम नहीं मिलता, थक जाते हैं ना, तो फिर अच्छा, थोड़ी बहुत अच्छा। देखते फिर सो जाते हैं।
1: तो क्या करती हैं आप?
0: मैं सिलाई करती हूँ मैडम।
1: अरे वाह,
2: ये तो बहुत ही क्रिएटिव वाली फील्ड है। हसीना जी, मुझे आप कोई दूसरा गाना बता पाएंगी क्या? ये गाना अभी हमें मिल नहीं पा रहा है।
0: अच्छा ये नहीं मिल रहा
2: जी, दूसरा बताइए प्लीज।
0: नागिन का सुना दीजिए।
2: नागिन का कौन सा गीत के बोल बताएं?
0: हाँ।

0: ये सुना दीजिए।
1: जी बिल्कुल, सुनवाते हैं आपको। अच्छा, आपने ये फिल्म देखी है?
0: हाँ, रीना राय जीतेन वाली है फिल्म, देखी, फिरोज खान है।
1: अच्छा, इसके अलावा और कौन सी फिल्में पसंदीदा हैं आपकी, आप जब देखती थी तब के जमाने की?
0: सभी फिल्में पसंद है मैडम, जीतेन की, धर्मेंद्र की, अजूबा देखी है, फिर तो धर्मवीर देखी है, दोस्ताना देखी है, बहुत सारी फिल्में देखी है।
2: क्या
1: अरे वाह,
2: बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो फिल्मों से और म्यूजिक से इतना

0: जी। और एक सुझाव भी देना चाहती हूँ मैडम, इससे
1: जी
0: जैसे
1: जी
0: पहले है ना तो खत शामिल होते थे युवाणी में और
1: जी
0: ईमेल भी
1: जी जी
0: होते थे, तो ये भी करें तो बहुत धन्यवाद,
1: जी
0: अच्छी
1: जी
0: बात
1: जी
0: रही।
1: बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे। कभी कभी हम ईमेल शामिल करते हैं जो मेल्स हमें आते हैं, पर आपके सुझाव के साथ हम खत पढ़ना भी चालू करेंगे। आप हमें खत लिखना बंद मत करिएगा। हसीना जी, जब तक हम आपका गाना ढूंढ रहे हैं, हमें ये बताइए, आपने कहा कि आप सिलाई वगैरह करती हैं, तो फिर आपके वहाँ पे और साथी होंगे जो कलीग्स होंगे, उनको भी आप ये सब कार्यक्रम सुनवाती हैं, उनको कैसे लगते हैं?
0: हाँ, रेडियो सुनते हैं ना वहाँ पर भी, दुकान पे भी सभी सुनते रहते हैं मैडम, इससे तो कोई परेशानी नहीं होती है, सबको अच्छा लगता है। और हमारा कॉल लग गया था तो बोलते हैं आपका कॉल लग गया और आप बहुत जल्दी लगा लेते हो बोलते।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। चलिए अब हम आपको आपका ये पसंदीदा गीत सुनवाते हैं।
0: जी शुक्रिया।
2: कि जैसे तपते हुए सहराओं में सदियों बाद बरसात हो गई,

0: आइए श्रोताओं, अब जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो फ्रेंड्स।
1: नमस्ते मैडम। जलती
0: नमस्ते सर, क्या नाम है आपका?
1: है साइकिल तो उड़ती है धूल, और दोनों ही चुलबुली सी बहनों के हाथों में हमारी ओर से गुलाब का फूल।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने जो हमारे लिए कहा ये तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया हमें।
1: मैं मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ, पालदा नाका इंदौर से।
0: अच्छा, तो बताइए मोहम्मद जी, कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: फूल और कांटे का सुनवा दीजिए।
0: गाने के बोल बताइए हमें।
1: पहली बारिश में और तू।
0: पहली बारिश में और तू, फूल और कांटे फिल्म से ये गीत, ये आपको सुनवाते हैं।

0: आइए श्रोताओं, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से।
1: हेलो
0: हेलो
1: फ्रेंड्स।
0: फ्रेंड्स।
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो फ्रेंड्स,
1: हेलो सर, नमस्कार
2: नमस्कार।
1: जी। किससे बात हो रही है
2: विजय
1: मेरी?
2: भाटिया बोल रहा हूँ मैं, इंदौर से। विजय
1: जी एक बार फिर से अपना नाम दोहराइए।
2: भाटिया,
1: अच्छा भाटिया जी, बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
2: राजन फिल्म का सुनना मुझे अपना पंकज उदास जी की आवाज में है,
0: जी गीत के बोल बताएं।
2: बोल।
1: अच्छा, साजन फिल्म से पंकज उदास जी की आवाज में
2: हाँ
1: आपको हम गीत, हम ढूंढते हैं उनकी आवाज, किस गीत को आवाज दी है उन्होंने उस फिल्म में। आपको अगर बोल याद आते हैं तो बताइएगा। इसके अलावा आप बताइए क्या करते हैं आप?
2: मैं रिटायर्ड व्यक्ति हूँ एमवाय से,
1: अच्छा, तो आप डॉक्टर रहे
2: नेत्रहीन
1: हैं।
2: हूँ। हेलो,
0: जी आप डॉक्टर रहे हैं सर?
2: डॉक्टर नहीं रहा हूँ, मैं क्लास 4 में था,
0: अच्छा, तो अभी मतलब आप बस अभी,
2: रिटायर्ड हूँ,
0: ओके, तो अभी कैसे?
2: सीनियर सिटीजन हूँ।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो सर, आपने इतना प्यार दिया है रेडियो को।
2: जिए तो जिए कैसे बिन आपके।
1: जी जी जी बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं ये गीत, जिए तो जिए कैसे।

0: चलिए श्रोताओं, अब बढ़ते हैं
1: हेलो।
0: हमारे अगले कॉलर की तरफ।
1: हेलो
0: हेलो
1: जी, नमस्ते मैम
0: जी, नमस्ते, किससे बात हो रही है मेरी?
1: जी। मैं अरविंद अग्रवाल, श्रीनगर जिला महोबा से जी।
0: जी अनिल जी, बताइए कौन सा गीत सुनवाए आज आपको?
1: अरविंद,
0: जी
1: अरविंद नाम है मेरा, अनिल नहीं
0: अच्छा, सॉरी, माफ करिए मुझे। अरविंद जी, बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: जी। फिल्म का नाम रहेगा फरेब।
0: फरेब फिल्म
1: गीत
0: से
1: के
0: कौन सा
1: बोल
0: गीत?
1: सर, ये तेरी आंखें झुकी झुकी।
0: ये तेरी आंखें झुकी झुकी, बिल्कुल इस फिल्म से ये गीत हम आपको सुनवाएंगे। उससे पहले बताइए क्या करते हैं आप?
1: जी मैं किराने की दुकान है मेरी, उसी पे बैठ के आपको सुनता हूँ
0: तो ये तो मतलब बहुत अच्छा हो जाता होगा ना आपके लिए, रेडियो
1: जी।
0: का बिल्कुल साथ रहता होगा आपके साथ में, सुबह से लेकर रात तक एक सफर ही अनोखा रहता होगा सर,
1: जी
0: तो बहुत अच्छी बात है सर। तो मतलब कैसा, क्या अभी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे मौसम के क्या मिजाज है? जैसे इंदौर में तो आज हल्की हल्की बारिश हुई है,
1: यहाँ नहीं हुई, यहाँ तो बहुत उमस है, कल हुई थी रात में शाम
0: क्या
1: को जी।
0: बात है, तो उससे तो और ज्यादा उमस हो गई होगी।
1: लाइट भी नहीं है कल रात 8 बजे से अभी तक जी।
0: लाइट नहीं रहती है फिर भी रेडियो का साथ तो बना रहता है सर, बिल्कुल है ना?
1: केवल
0: तो रेडियो पे और कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप हमारे?
1: फोन इन और खास तौर पे लाइव
0: अच्छा,
1: रिकॉर्डिंग ही
0: केवल
1: नहीं
0: फोन ही नहीं सुनते हैं, ये जान के तो हमें
1: जी।
0: बहुत खुशी हुई कि आप हमारे, आप और प्रोग्राम भी सुन सकते हैं, आपको पसंद आएंगे।
1: जी मैं शॉर्ट लाइन सुनता हूँ आपका और दूसरा
0: जी, युववाणी में भी आप रोज सुन सकते हैं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग थीम्स होती हैं
1: जी।
0: जी। इसी तरह आप सुनते रहिए, आपको सुनवाते हैं आपका पसंदीदा ये गीत।
1: जलाओ दीप, चरागा करो जमाने में। अरे बहार आई है मेरे गरीब खाने में, समझे मेरे लाल।

0: तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर। तो नमस्कार सर।
1: हेलो फ्रेंड्स।
0: हेलो
2: हेलो, नमस्ते मैम। राजेंद्र सोलंकी।
0: जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप राजेंद्र जी?
2: मैम मैं जिला खरगोन पश्चिम निमाड़ से बात कर रहा हूँ मैम।
0: बताइए सर, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप आकाशवाणी की ओर से?
2: मैम मुझे रोटी फिल्म का गीत सुना दीजिए, गोरे अंग पर इतना गुमाना कर।
1: माफ कीजिएगा राजेंद्र जी, आज आपको ये गीत हम नहीं सुनवा पाएंगे क्योंकि हम समय को लेके थोड़े से पाबंद हैं आज, क्योंकि हमारा कार्यक्रम आज लेट शुरू हुआ जिसकी वजह से हमारी कार्यक्रम की अवधि थोड़ी छोटी रही, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन अगली बार हम आपको आपका ये गीत जरूर सुनवाएंगे। इस वादे के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। मैं वैष्णवी
0: और मैं अनुष्का,
1: आप सभी को हमारा नमस्कार।
2: नमस्ते मैम।

0: 2% विकसित।
1: बढ़ते कदम, बदलता भारत, विकसित होता भारत।

0: बढ़ते कदम, बदलता भारत, विकसित होता भारत।
1: हेलो, बोल। नमस्कार श्रोताओं, विकसित होता भारत के इस अंक के साथ हाजिर हूं मैं नीलम चौरे। श्रोताओं, बात करते हैं विकसित होता भारत की। गर्व होता है कि हमारा देश अनेकों चुनौतियों को पार करते हुए निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ष 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब हमारा देश कैसा होगा? इसी सपने और संकल्प का नाम है विकसित होता भारत। एक ऐसा राष्ट्रीय विजन जिसका लक्ष्य भारत को आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, तकनीक और सांस्कृतिक रूप से दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में लाने का प्रयास किया जाना, जहां हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के अवसर और सुरक्षित, सम्मानजनक जीवन प्राप्त हो सके। विकसित भारत का अर्थ केवल ऊंची ऊंची इमारतें नहीं या सड़कें नहीं श्रोताओं, आधुनिक तकनीक नहीं है, बल्कि श्रोताओं, ऐसा भारत जहां गांव शहर दोनों विकसित हों, हर घर तक स्वच्छ जल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध हों, जहां जरूरी सेवाएं पहुंचे, युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले, महिलाएं आत्मनिर्भर और मजबूत बने। इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तत्पर विकसित होता भारत, जो एक सपना नहीं हकीकत है, एक जन आंदोलन जिसमें जन भागीदारी होना बेहद जरूरी है।

0: जाता है किसी देश का भविष्य उसकी सही योजना और सही जानकारी पर निर्भर करता है। यदि हमें पता ही ना हो कि किस देश में कितने लोग हैं, कहाँ स्कूलों की कमी है, किन क्षेत्रों में पानी, सड़क और अस्पताल की आवश्यकता है, तो विकास की सही दिशा तय करना कठिन हो जाता है। यही कारण है श्रोताओं, जनगणना किसी भी देश के विकास की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। जनगणना केवल लोगों की गिनती नहीं, बल्कि देश की जरूरतों, संसाधनों और भविष्य की योजनाओं को समझने का आधार है। आज भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है श्रोताओं, और विकसित भारत 2047 उसी सोच का एक बड़ा लक्ष्य है। लेकिन विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है श्रोताओं, जब सरकार के पास देश की सही और सटीक जानकारी हो। यही जानकारी जनगणना के माध्यम से प्राप्त होती है। जनगणना सरकार को यह समझने में मदद करती है कहाँ विकास की अधिक आवश्यकता है, कितने युवाओं को रोजगार चाहिए, किन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, आने वाले वर्षों में देश की जरूरत क्या होगी। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जनगणना में जन भागीदारी क्यों जरूरी है, इसका आम लोगों को क्या लाभ मिलेगा और हम सभी देश के विकास में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विस्तार से जानेंगे कि जनगणना में जन भागीदारी क्यों जरूरी है। तो आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है और वो है जनगणना। अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि जनगणना आखिर होती क्या है, सरकार क्यों करती है, इससे आम जनता को क्या लाभ मिलता है और इसका विकसित भारत 2047 से क्या संबंध है। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों को जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में उपस्थित है अशोक वानखेड़े जी, जिन्हें जनगणना 2027 में प्रगणक के रूप में नियुक्त किया गया है। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम विकसित होता भारत में। सरल शब्दों में हम जानना चाहेंगे जनगणना आखिर होती क्या है, जनगणना 2027 क्या है।
1: जनगणना यानी सेंसस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार देश के हर व्यक्ति और हर परिवार से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करती है। इसके माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि देश में कितने लोग हैं, कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोगों के पास रोजगार है और किन क्षेत्रों में पानी, सड़क, अस्पताल या स्कूल जैसी सुविधाओं की आवश्यकता है। जनगणना 2027 भारत की अगली राष्ट्रीय जनगणना होगी जिसमें डिजिटल तकनीक का अधिक उपयोग किया जाएगा। यह केवल लोगों की गिनती नहीं है, भविष्य की योजनाएं बनाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। और आपने जैसा कहा कि 2027 जनगणना क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा भारत की अगली राष्ट्रीय जनगणना 2027 होगी जिसमें डिजिटल तकनीक का अधिक उपयोग किया जाएगा। यह केवल लोगों की गिनती नहीं है, बल्कि देश की जरूरत को समझने और भविष्य की योजनाओं को बनाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होगा। इसमें मैं अपनी जानकारी आपको पुनः प्रेषित कर रहा हूँ। जनगणना 2027 के बारे में कुछ तथ्य और बताने जा रहा हूँ, जिसमें यह स्वतंत्रता के पश्चात आठवीं जनगणना हमारे देश में हो रही है, जिसे दो चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण जो अप्रैल 1 तारीख से 2026 से लेकर 30 सितंबर 2026 तक रहेगी, जिसमें मकानों की सर्वप्रथम गणना की जाएगी। तत्पश्चात द्वितीय चरण जो फरवरी 2027 में आयोजित होगा, उसमें व्यक्ति विशेष की जनगणना होगी।
0: सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई, और अब क्वेश्चन वही है कि जनगणना क्यों जरूरी है और 2027 और 2047 एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए।
1: बहुत अच्छा सवाल है आपका। विकसित भारत 2047 भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है और इसका दूरदर्शी विजन यह है जिसका लक्ष्य स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक देश को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है। आर्थिक लक्ष्य, प्रति व्यक्ति आय, बुनियादी ढांचा, सामाजिक कल्याण और युवाओं की भूमिका इस विजन के मुख्य लक्ष्य है। और मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी देश की तरक्की युवाओं पर निर्भर करती है और भारत युवाओं का देश है, अतः हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनकर पूरे विश्व में अपना परचम लहराएगा।
0: सर, इसीलिए तो कहा जाता है कि विकसित भारत 2047 की नींव है।
1: जी नीलम जी, बिल्कुल, यदि सरकार के पास सही डेटा होगा तभी सही विकास संभव हो सकेगा।
0: सर, अब हम जानना चाहेंगे जनगणना कैसे की जाती है। सर, एक सवाल श्रोताओं के मन में ये कहें कि आम नागरिक भी ये जानना चाहता है, क्योंकि उसके मन में आशंका और भय बना रहता है कि वो अपनी निजी जानकारी क्यों बताए, या बता भी रहा है तो उसको इससे क्या लाभ होगा, इस बात पर फोकस करें।
1: जैसे हम पहले ही जान चुके हैं कि जनगणना 2027 मुख्य रूप से दो चरणों में आयोजित होगी। अभी हाल फिलहाल में प्रथम चरण का कार्य तेजी से चल रहा है, जहां मकान सूचीकरण और आवास की जानकारी शासकीय कर्मचारी द्वारा घर घर जाकर मकानों की स्थिति, वह कैसा मकान है, मतलब मिट्टी का बना है, पक्की ईंट का है, छत का उसका प्रकार क्या है, टीन शेड का बना हुआ है या छत डली हुई है, मकान का उपयोग किस रूप में हो रहा है, व्यावसायिक रूप में या दुकान के रूप में, पानी की उपलब्धता, बिजली, शौचालय का विवरण, क्रमबद्ध रूप से विवरण को प्रगणक के द्वारा दर्ज किया जा रहा है। और दूसरा जो सवाल था कि इससे क्या लाभ होगा, तो सबसे बड़ा लाभ जो है वह आम जनता को ही मिलने वाला है, क्योंकि सही जानकारी अगर सरकार के पास अगर जाती है तो जो क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं वहां से स्कूलों की स्थिति का अवलोकन कर शासन मुख्य रूप से उस पर काम करेगी कि यहाँ पर शिक्षा की आवश्यकता है या चिकित्सा की आवश्यकता है या पानी बिजली जैसी जरूरतों को पूरा करने और बेहतर योजनाओं को कैसे पूर्ण कर पाएगी, और युवाओं के लिए रोजगार, यानी सरकार जनता का वास्तविक जरूरतों को समझकर काम करने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध रहेगी।
0: और सर, एक बात और कि 2027 की जनगणना में तकनीक का क्या योगदान रहेगा?
1: नीलम जी, आपको जानकारी पहले ही दे चुके हैं कि यह जनगणना डिजिटल होने जा रही है, तो भारत की जो जनगणना इस समय जो चल रही है और डिजिटल जानकारी यहाँ पर पहली बार हो रही है, तो जनगणना का अधिकतर कार्य पहले कागजों पर किया जाता था।

0: तो उसमें सटीकता का थोड़ा सा अभाव था। अब हाल फिलहाल में मोबाइल आधारित ऐप जो आ गया है और ऑनलाइन डेटा, तेज रिकॉर्ड सिस्टम और एआई पर आधारित विश्लेषण का उपयोग कर इस जानकारी को तेजी से और अधिक सही तरीके से एकत्रित कर जनगणना 2027 का हम कार्य कर रहे हैं।
1: और एक बात और हम जानना चाहेंगे सर, कि जनगणना केवल सरकार के लिए जरूरी है या आम नागरिक भी इसमें योगदान दे सकते हैं? यदि वो भी इस काम में आगे आना चाहें तो वो अपना योगदान कैसे दें?
0: इसमें हर नागरिक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग सही जानकारी देकर, जागरूकता फैलाकर और दूसरों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करके देश के विकास में और अधिक योगदान दे सकते हैं। यदि लोग गलत जानकारी देंगे तो योजना भी प्रभावित होगी। इसलिए ईमानदारी और जागरूकता दोनों ही बहुत आवश्यक है जनगणना में।
2: नागरिक छोटे छोटे कदम उठाकर देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। लोग बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकते हैं, पानी और बिजली बचा सकते हैं, डिजिटल सेवाओं का सही उपयोग कर सकते हैं, स्वच्छता बनाए रख सकते हैं और सरकारी योजनाओं की जानकारी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। देश का तभी विकास संभव है जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे और उसे ईमानदारी से निभाए। मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा। ए सिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज जिद हमारी जद हमारी। तो भारत युवाओं का देश है। आज के युवाओं को यह समझना चाहिए कि देश का विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जब युवा जागरूक बनेंगे, सही जानकारी देंगे, शिक्षा और कौशल पर ध्यान देंगे तथा समाज के लिए काम करेंगे, तभी भारत सही मायनों में एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। जनगणना संबंधी जानकारी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को समझाने का मुझे मौका मिला और श्रोताओं से भी विनती है, निवेदन है कि जनगणना संबंधी जानकारी लेने अगर कोई प्रगणक आता है तो उसे कृपया सही जानकारी देकर देश के विकास में अपना योगदान दे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियोज में आए और विषय से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, जनगणना केवल आंकड़ों की गिनती नहीं, बल्कि यह भारत के भविष्य की योजना बनाने का आधार है। यदि सही जानकारी, आधुनिक तकनीक और जागरूक नागरिक साथ आएं, तो विकसित भारत 2047 का सपना निश्चित रूप से साकार होगा। तो आइए श्रोताओं, हम सभी एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश के विकास में अपना योगदान दें।
3: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
4: क्या कहती हो शाबू की माँ?
3: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
4: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से।

की विकास यात्रा की तो बदलावों और प्रगति का दौर देखने को मिला। देश ने कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है। श्रोताओं, जैसे एक बीज धीरे धीरे बढ़कर एक मजबूत वृक्ष बनता है, वैसे ही योजनाओं और नीतियों के माध्यम से भी देश का विकास निरंतर आगे बढ़ा है। तो चलिए श्रोताओं, बात करते हैं योजनाओं में से एक उड़ान योजना की। ऐसी योजना जिसने आम नागरिकों के सपनों को पंख देने का काम किया है। श्रोताओं, कहा भी गया है कि अब आसमान छूना सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बन रहा है। पहले हवाई यात्रा को केवल कुछ खास

लोगों तक सीमित माना जाता था। आम नागरिक हवाई यात्रा के बारे में सोच भी नहीं पाते थे। दूरी ज्यादा होने के कारण यात्रा में समय भी अधिक लगता था और कई बार जरूरी काम भी प्रभावित हो जाते थे। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की 2016 में और उड़ान का पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना का उद्देश्य छोटे छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ना और आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाना। देश के छोटे शहरों के हवाई अड्डों को फिर से सक्रिय किया, नई उड़ानें शुरू हो रही हैं और किराए भी किफायती बनाया गया ताकि आम नागरिक भी अपना व्यवसाय, रोजगार, शिक्षा के लिए देश से एक दूसरे शहर जाकर नए अवसर खोजे। महिलाओं के लिए भी नए अवसर खुले। अब महिलाएं आसानी से हवाई यात्रा कर पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय को आगे बढ़ा सकती हैं। उड़ान योजना ने केवल यात्रा को आसान नहीं बनाया श्रोताओं, बल्कि देश के विकास को भी गति दी है, जिससे आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिल रहा है। श्रोताओं, यह योजना हमें सिखाती है कि जब अवसर मिलते हैं ना, तो सपनों को उड़ान देना आसान हो जाता है। याद रखिए श्रोताओं, सपनों को पंख मिले तो मंजिल खुद करीब आ जाती है। नई उड़ान, नया भारत, हर सपने को मिले नई पहचान।

0: भारत का सपना केवल और केवल सरकार के प्रयासों से पूरा नहीं होगा। इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। यदि हम सभी मिलकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तो वह दिन दूर नहीं जब भारत आत्मनिर्भर और शक्तिशाली राष्ट्र समृद्ध राष्ट्रों में अपनी पहचान बनाएगा, जो अपनी निरंतर यात्रा को आगे बढ़ने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करे। इसी संकल्प के साथ अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे। आज बस इतना ही। श्रोताओं, कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने, और अब दे अनुमति अपनी नीलम चौर्य को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: बढ़ते कदम, बदलता भारत, विकसित होता भारत।

0: बढ़ते कदम बदलता भारत, विकसित होता भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विकसित होता भारत, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में पेश है जगजीत सिंह की गाई ये गजल।

सुगम संगीत में आज आपने सुनी जगजीत सिंह और श्रेया घोषाल की गाई गजलें। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में प्रस्तुत है सखाराम सीताराम राठौर और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत।

0: लोक संगीत में आज आप सुन रहे थे सखाराम सीताराम राठौर और साथियों के गायन निमाड़ी लोकगीत। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7 बजने को है, समाचार कुछ ही पलों में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में यह बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार के पूर्वोत्तर दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
2: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देशभर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों ने योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू होगा। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है।

0: और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। भारत सोमवार से शुरू हो रही दो दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथूला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। जत्थे में दो संपर्क अधिकारियों और एक चिकित्सा अधिकारी सहित 41 तीर्थयात्री और 4 सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस दल की कुल संख्या 47 हो गई है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 123 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:05 हुए हैं, वक्त है कार्यक्रम विवरण का। तो आइए अब आपको हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:20 से कार्यक्रम खेती गृहस्थी में सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से भेंटवार्ता होगी। विषय है उद्यानिकी फसलों में समसामयिक कार्य। 8:00 से सुनिएगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 9:15 से चित्रगीत सुने जा सकते हैं। 9:30 से राष्ट्रीय चित्र पत्रिका चित्र भारती और रात 10:00 से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए अब आपको हमारे कल अर्थात रविवार 21 जून को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कल सुबह 6:05 से सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 से श्री रामचरित मानस गान का पाठ होगा। 7:20 से कार्यक्रम योग निरोग में मानसिक तनाव दूर करने के योगिक उपाय पर कोमल यादव से उमेश कुलकर्णी की चर्चा होगी। 7:30 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से करेंगे। 8:30 से सुनिएगा बच्चों का कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे। 9:00 से लोक संगीत में सुनिएगा प्रहलाद सिंह टिपानिया और साथियों के गाय मालवी लोकगीत। 9:10 से कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:25 से सुगम संगीत में आप सुन सकते हैं पंकज उदास को। 9:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा पंडित वीजी जोग के वायलिन पर बजाए राग शुद्ध सारंग का। 10:05 से सचिव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन में हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। हमारी कल दिन की सभा में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 11:00 से सचिव फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 11:40 से प्रायोजित कार्यक्रम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। 12:02 से आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। 12:30 से संग्रहालय से 1:00 से महिला कार्यक्रम, 1:30 से लोक संगीत, 1:45 से सुगम संगीत, 2:00 से फिल्म संगीत और 2:30 से बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान। तो ये थे हमारे कल दिन की सभा में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विवरण। हमारी कल सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी संध्या 5:00 से। युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी के साथ। फिल्म संगीत सुनिएगा 5:45 से, 6:30 से ICC वुमन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण की आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये थे हमारे कल अर्थात रविवार 21 जून को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ
1: जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना।
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सूनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ 44 लाख से किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। इंदौर में 2935 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का हुआ भूमि पूजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में होंगी शामिल। और भोपाल इंदौर समेत 38 जिलों में आंधी गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। 9 करोड़ 44 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बार पश्चिम बंगाल दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज भाजपा सरकार में विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है।
5: सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी।
4: इससे पहले प्रधानमंत्री ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के राय रांग में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी आबादी द्वारा दशकों से झेली जा रही अभावग्रस्तता की जगह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और सामाजिक उन्नति के नए अवसर मिल रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सांवेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2935 करोड़ रुपए, लंबाई 48 किलोमीटर है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकास का पर्याय बनेगा। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों को व्यापक लाभ मिलेगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना से मेट्रोपोलिटन रीजन के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में दूध, फल और सब्जियां लेकर मोटरसाइकिल से परिवहन करने वाले किसानों के लिए हेलमेट वितरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
6: मोटरसाइकिल से दूध, फल, सब्जी लेकर के गांव से जो किसान निकलते हैं, उनकी जिंदगी की कीमत भी होना चाहिए, इसलिए हमने अभियान चालू करने का निर्णय लिया है। क्या हम हेलमेट का अभियान चलाएंगे? हेलमेट से व्यक्ति की जान भी सुरक्षित रहती है, प्रतीकात्मक

0: रूप से इंदौर प्रशासन द्वारा कुछ हेलमेट वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा ताकि हमारे लोगों की जान भी बचे। सुना चाहिए कि उनका आशीर्वाद माननीय मोदी जी के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा।
1: इसके पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन में कान्हा डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। यह परियोजना माँ क्षिप्रा के जल को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन के बाड़ी में आयोजित प्रदेश स्तरीय जन कल्याण शिविर में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। श्री चौहान ने भोजपुर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 31 नई ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी। साथ ही उन्होंने राज्य के किसानों के लिए मूंग खरीदी की औपचारिक स्वीकृति और कम बारिश की आशंका के मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकार के साझा कंटिजेंसी प्लान का ऐलान किया।
2: भारत सरकार से मूंग खरीदी की अनुमति मांगी है और आज ही बाड़ी की इस पवित्र धरती से मूंग खरीदी की स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार को दी जाएगी ताकि किसान भाई अपने मूंग को बेच सकें। यह मूंग अपनी तीसरी फसल है और इसलिए मूंग किसान की मेहनत है, उस मेहनत के पूरे दाम दिए जाएंगे, किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी।
1: नीट यूजी पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसी विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। जबलपुर जिले में परीक्षा के लिए 23 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10,426 परीक्षार्थी शामिल होंगे। समाचार में अब वक्त एक छोटे से विराम का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। यह विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। समारोह सदर के गैरिसन ग्राउंड में सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा। योग दिवस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह मुख्य अतिथि होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है।
1: केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सकीय औचित्य नहीं और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारण, ऐंठन और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। प्रदेश में मानसून 25 जून के आसपास प्रवेश कर सकता है। फिलहाल

प्री मानसून गतिविधियों के चलते मौसम में बदलाव बना हुआ है और आज भोपाल इंदौर समेत कई जिलों में आंधी गरज चमक और बारिश होने के समाचार मिले हैं। मौसम विभाग ने आज सीहोर और आगरमालवा जिले समेत 38 जिलों में आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं रीवा, सतना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार और खरगोन जिलों में तेज धूप और उमस बने रहने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में नृत्य गायन और वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर बीते 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हो गई है। झाबुआ में 5 और 15 वर्ष की आयु वाले बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए स्कूलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आगरमालवा में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कल मास्टर वॉलेंटियर्स को जिला स्तरीय नशा मुक्ति जन जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया और झाबुआ कलेक्टर ने जिले में खुले और अनुपयोगी बोरवेलों से बच्चों और पशुओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी सुनने वाला सगलाज किसान भाई बहन ने नाना नानी होण के धरणीधर मिश्र की राम राम। आओ भाई आओ बैठो न सुनाओ कसा कहीं हाल चाल चल रहा है। हाल चाल तो सबका मजे में ही है नी, न घरे भी सब सुख चैन है। और आज एक खास बात की और खुशी है किसान भाई उनके, सब समझ ही गया हुआ भाई, आज का दिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी हुईगी भैया। आज अपना खाता में आया कि नहीं आया पैसा देख लीजिए, 2000 रुपया। आज का दिन पश्चिम बंगाल का हुगली जिला में तारकेश्वर में हमारा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज किस्त जारी करी है 23वीं। 9,44,00,000 किसान भाई उनका खाता में या किसान सम्मान निधि आएगी है भाई। इसमें 6,000 रुपया साल भर में मिले ना सबके मालूम है, न 2,000 रुपया की किस्त रहे इसमें, तो आज वह किस्त जारी हुई है। न इनमें 18,800 करोड़ रुपया पूरा देश का 9,44,00,000 किसान भाई उनका खाता में आया है। तो भाई अपन भी चेक कर लो अपना खाता में आया कि नहीं आया। एक तो अपन पोर्टल पर जाके चेक कर सका भाई, पोर्टल पर सबके मालूम होगा पीएम किसान बिंदु यानी .gov.in एक पे जाके चेक कर सका अपन। पीएम किसान PMKISAN .gov.in एक पे जा सको अपन, है ना। अपनो स्टेटस देखने सरू नो योर स्टेटस इन पे अपने को क्लिक करना है, दबाना है अपने खट को, फिर अपनो रजिस्ट्रेशन नंबर न कैप्चा कोड भरा न फिर OTP से वेरीफाई करा, है ना, उनकी पुष्टि करी ला। कभी अपना EYC पे ग्रीन टी के हरो रंग को टिक है तो इसको मतलब है आपके खाते में पैसों आ ही जाएगा। तो भैया ये है कि नहीं आज की खास बात सबसे बड़ी, न दूसरी सबसे बड़ी बात ये होगी कभी अपना खाता में नहीं होए, है नहीं, नहीं आयो पैसों तो कहीं करनो, तो दो चार चीज़ को और खास बात को ध्यान रखना। वो कसी कि भाई अपन ने EKYC कराई कि नहीं कराई, नहीं कराई हो तो सबसे पहला अपने जाके बैंक में EKYC कराना। वो फिर फार्मर ID बनी कि नहीं बनी अपनी, न कभी अपन ने जब योजना को लाभ लेने शुरू आवेदन करे तो उसमें कोई गलत जानकारी तो नहीं भरी गई अपनी, वो ध्यान रखना। न खास बात एक कि अपनो आधार कार्ड जो है अपना बैंक खाता से लिंक है कि नहीं है, यो सब बात की अपने हेर रखनी पड़ेगी, तब अपने खाते में पैसा आया कि नहीं आया उनकी पुष्टि हो जाएगी। वैसे तो बैंक भी मैसेज करे ही करे, अपना खाता में भी मैसेज आए आए अपना मोबाइल पे भी, पर कभी कभी नहीं होए तो इन सब बात की जानकारी रखो भाई। और आज जो तारकेश्वर से अपना खाता में पैसा आया है उनके अपने घर के बाकी सदस्य उनके अपने परिवार का लोग ना के जानकारी दे दो भैया, सबके जानकारी हो जाए। वो यदि किनके नहीं आयो आस पड़ोस नाता रिश्तेदार दूसरों मोहल्ले वाला जिनके बेचारे मोबाइल नहीं चलाए बड़े वालों उनके बताई दो, तो वे चेक कर ले अपना खाता में पैसा आया कि नहीं आया। तो भाई ये हम सब किसान भाई सरू एक खुशी की बात है, अपना खाता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का योजना का जो पैसा है वे आज आया है नहीं, तो आज जारी हो गया है ना। अभी 2 घंटा से अभी दोपहर बाद से कार्यक्रम चल रहे थे और प्रधानमंत्री जी ने सबके जारी कर ही दियो है, जो सबके जानकारी में भी है, जिनके जानकारी नहीं है हम बता ही रहे हूँ। तो भैया अपना अपना खाता देख लो चेक कर लो, तो आज 23वीं किस्त आएगी अपनी। तो भाई ये तो अपनी जानकारी की बात हुई, अब और भी जानकारी करांगा और भी बात करांगा। सबसे पहला अपन सुना आज चौपाल पे ये लोकगीत भाई हेमलता उपाध्याय ने इनकी मंडली को गाया हुआ, सुना भाई।

वाह भाई वाह, पानी की पहली फुहार। अपना मालवा निमाड़ में कितनी जगह जो है आज भी फुहार पड़ी रही है, और लगभग ये समझ लें अपन पहली दूसरी फुहार ही आई रही है। पर ये तो अपन देखियो है, प्रकृति को आशीर्वाद है, पर हम इन आशीर्वाद के सहज रहे हैं कि नहीं, हम उन्हें पानी के संरक्षित कर रहे हैं कि नहीं, यो भी सोचने की बात है। अपन देखा कितनी जगह पानी वायदे बहतो रहे है नहीं, कितनी जगह देखो तो पानी जो है ना बर्बाद होते रहे, जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा पानी बहतो रहे। तो कभी हम पानी के सहेजेंगे नहीं, हम उन्हें बर्बाद होने देंगे तो हम कहाँ से लाऊंगा पानी। और जल बिन सब सून, कहना को मतलब यदि अपना जीवन में पानी नहीं है तो सब कुछ। और हमारा किसान भाई उनको तो पानी ही सबसे बड़ी पूंजी है, पानी अपना भगवान है, पानी अपना देवता है। तो पानी सहेजने शुरू अपन जो अभी जैसे बारिश शुरू हुई रही है, और अभी लगभग शुरू भी नहीं हुई कितना जगह, तो क्यों ना अपन अभी से थोड़ी चिंता कर लें। अपना खेत का जो किनारा है, खेत का जो अपना ढलान है, वहाँ की जगह अपन बड़ो सारो छोटो, बड़ो छोटो जैसे भी अपनी जगह रहे, एक बड़ो गड्ढो कर ला, एक छोटो मोटा तालाब बनाई ला छोटा छोटा, तो वो जो पानी बचेगो वो पानी से अपना भूजल स्तर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। गर्मी की बखत में अपना ढोर ढांडा ना से पानी उनके शुरू हो जाएगा, अपना खेत शुरू पानी इकट्ठो रहेगा। तो अपन ऐसी जगह जहाँ अपने पानी इकट्ठो करना में कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तो अपन कर ही सका न। जो मकान है अपना, अपना जो भवन है, शहर में हो चाहे गांव में हो चाहे बस्ती में हो, वहाँ भी जो अपने पानी छत पे जो बह पानी है उनके इकट्ठो करी के अपन पाइप का माध्यम से जमीन में नहीं उतार सका कहीं, कितो सरल काम है। उनके बोले ना पानी की खेती करना, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, छत को पानी जमीन में उतारना। तो अपन देखा आज कितना 300-400 फुट नीचे चले गए पानी, वो दिनों दिन नीचे जा रहे हो। तो अपन इन्हें पानी के संरक्षित करने भी बहुत जरूरी, ये भी हम किसान भाई उनकी ना हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भगवान ने अपने पानी दियो है वो बेफालतू भई के इधर उधर नरी नाला में से हो के समुद्र में पहुंच जाएगा ना। जब अपने पानी की जरूरत पड़ेगी पीने के पानी की, तो हमारे दो दो तीन तीन किलोमीटर से न गड्ढा में डबुकला में कुआं में उतर उतर के लाना पड़ रहे हो। अपन देखा ना कितनी जगह अपने कितनी समस्या है पानी की। तो पानी अनमोल रतन है ना। और यह बात हम किसान भाइयों से ज़्यादा और कौन समझी सके भाई। तो अपने यो खास बात ध्यान रखनो कि पानी बेफालतू नहीं बहानो। जैसे अपन खेत में भी पानी लगावा तो वो मोटर चालू कर दी, बोर चालू कर दिया न, घर आई के सोई गया, चले रहे रात भर घंटान चल रहे। भाई जितनी जरूरत है उतनी लो ना, खो ना अपन पानी ज़्यादा क्यों करा न। जब भगवान को पानी जो आयो है इनके भी अपन सोच समझ के रखा। और अपन किसान में तो देखा अपन

0: फव्वारा पद्धति से, दूसरी पद्धति से अपन पानी को तो बहुत सहजा, पर जहाँ सो दिखे कि कोई भाई लोग पानी के बारे में गंभीर नहीं है, तो ये अपनों कर्तव्य है, अपनी जिम्मेदारी है कि अपन उनके भी समझाओ कि भाई देख ये पानी है ना सबसे जरूरी चीज़ है जीवन की, तो भाई अपन थोड़ा ध्यान रखो जल संरक्षण का बारे में। और जहाँ जहाँ संरक्षित कर सका, कुआ है, बावड़ी है, अपना घर का आसपास है, उनके जो है संरक्षित रखा, पानी रहेगा तो ज़िंदगी अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेगी, अपना अच्छे से अच्छा रहेगा, अपना खेत बाड़ी अपना घर सब समृद्ध रहेगा। तो भाई लोग अपन बात तो करता रहेंगे पानी की, खेती बाड़ी की, न साथ ही साथ कभी कभी अपने ध्यान देना अपन अपने चौपाल पे जानकार भाई के बुलावाएंगे, है ना, न जो खेती बाड़ी संबंधित चीज़ रहे, जानकारी रहे, विषय रहे, उनके बारे में उनका चर्चा कराना, उनसे अपनी चर्चा से हमारा किसान भाइयों के कैसे लाभ हो सका वैसी चर्चा कराना। तो इन्हीं क्रम में आज अपने चौपाल पे अपन ने उद्यानिकी फसलों में समसामयिक कार्य का विषय में चर्चा करी भाई सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से, और चर्चा कर रही हमारी सहयोगी अनुराधा बहन शर्मा। तो सुना भाई चर्चा।
1: किसान भाई बहनों ने अपन समय समय पर अपना स्टूडियो में अलग अलग विशेषज्ञों का आमंत्रित कराएं, जिकी खेती बाड़ी से संबंधित अलग अलग विषय पर अपन को जानकारी दे। इनाज क्रम में आज हमारा बीच में उपस्थित छे सेवानिवृत्त उप संचालक उद्यानिकी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव। अपन उनका से बात करांगा उद्यानिकी फसल न का बारा में, उद्यानिकी फसल न समसामयिक कार्य न का बारा में। सुभाष चंद्र जी श्रीवास्तव, आपको हमारा स्टूडियो में स्वागत है। राम राम।
2: नमस्कार। राम राम।
1: हम अपन अपनी बात शुरू करा। किसान जी छे वो अपना खेती बाड़ी का काम तो कर ही रहे, पर बहुत सारा किसान ऐसा भी छे जी उद्यान न की तैयारी भी करा, उद्यान लगाने का बारे में विचार करा, तो उनका आप किना तरीका से बताओ इन्हीं बात का।
2: सभी किसान भाइयों को सादर प्रणाम। आज जो विषय है कि उद्यान की फसलें अपनाने वाले किसानों को इस ग्रीष्म काल में क्या तैयारी करना चाहिए जिसके कारण उनकी जो है लागत कम हो और उपज अच्छी प्राप्त हो और कीमत भी अधिक मिले। खेती किसानी करने के लिए ये जो वर्तमान समय है ग्रीष्म काल का, सबसे बड़ा यहाँ लाभ होता है कि हमारी जो जमीन है उसकी उर्वरा शक्ति को हम कैसे बना के रख सकते हैं, उसको अधिकतम कैसे उपज ली जा सकती है, उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और नमी संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, वाटर पानी को जो है संरक्षित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में पर्यावरण को बचाने के लिए हवा पानी और जमीन तीनों की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं, तीनों का उपयोग मानव जीवन में है उसको बढ़ा सकते हैं और हमारी उपज और आय को वृद्धि इस सीजन में कर सकते हैं।
1: मतलब उन कहा कि ये समय छे वो साल भर की तैयारी न को समय छे।
2: बिल्कुल, यही समय है जिसमें जो है किसान पूरे साल का अपना बजट बनाए और पूरी साल में मिनिमम खर्चा कैसे किया जा सकता है वो पूरी प्लानिंग इसी सीजन में होती है।
1: उद्यानिकी के बारे में भी जैसा विचार कर रहा है हमारा किसान भाई कि खेती बाड़ी तो हमारी उनकी खेत में चली रही, पर कभी फल न की खेती न का बारे में विचार करा
2: जी,
1: तो ये समय छे कि ओका बारे में उनको नियोजन तैयार हो जानो चाहिए।
2: ये सबसे बढ़िया समय है, यदि हमें चाहे फल लगाना हो चाहे सब्जी लगाना हो, हम आज के समय में देख रहे हैं कि अब सब्जी लगाने में भी प्लानिंग है पहले से ही। अब कोई भी खेती या सब्जी मौसम के आधार पर कम हो गई है, अब जो खेती होती है वो बाजार के आधार पर होती है। यदि आप बाजार में एक बार देखें तो पहले जो लौकी आती थी वो लगभग 1.5 फीट 2 फीट की आया करती थी, कद्दू की अगर बात करें तो 20 और 25 किलो तक का होता है, लेकिन अगर हम आप बाजार में जाके देखें तो आपको 1 फीट के अंदर की जो है लौकी मिलेगी, कद्दू भी आपके पास छोटा होगा। ऐसा नहीं है कि सब्जी की डिमांड कम हुई है, एक्चुअली मार्केट में अब जो है डिमांड कम छोटे की है ताकि एक बार में उसको काट के और फिर उपयोग कर लिया जाए। तो इसके लिए जो हाइब्रिड सब्जियां आई हैं किसी भी मौसम में जो है बोया जा सकता है, किसी भी ताकि उनकी जो है बेमौसम में वो खेती करके और अधिक आय अर्जित की जा सके। इसको लेके अब इस सीजन में जब हम गर्मी का सीजन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमको जो है पूरी जो जमीन है भूमि की उसको जो है निर्जीवीकरण करने के लिए उसको

0: पोलराइजेशन करें, उसको जो है जीवाणु रहित करें, तो उसके लिए साल में 3 साल में एक बार गहरी जुताई करना चाहिए। इस समय जो है पूरी जमीन की जुताई करके छोड़ देना चाहिए, ताकि जो है गर्मी, सूरज की गर्मी से उसके अंदर जो हानिकारक कीट हैं, जीवाणु हैं, वो नष्ट हो सके। और यही समय है जब हम भूमि में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए जैविक खाद, गोबर खाद का जो है समावेश करें, उसमें डालें, ताकि उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ सके, उसके अंदर जीवांश की मात्रा बढ़ सके और उसमें के अंदर ह्यूमस डेवलप हो सके। वही है जो आपकी उपज अधिक देगा। अच्छे बीज का उपयोग करना, अधिक उत्पादन लेना। उत्पादन तब मिलेगा जब हमारे पास जो है जमीन उर्वरा शक्ति अधिक होगी।
1: अच्छी होगी।
0: तो यही समय है जिसमें हम जो है खाद डालें और जीवांश की मात्रा बढ़ाएं, ह्यूमस बढ़ाएं, गोबर खाद का उपयोग करें। और यदि हम उद्यान की फसलों की तरफ जा रहे हैं, बगीचा लगाने जा रहे हैं, तो यही समय है जब हम प्लानिंग करके एक लेआउट देके लाइन से गड्ढे खोदने का समय है, और गड्ढा खोदने के बाद उसमें जो है खाद डालने का समय है।
1: मतलब पूरी तैयारी अपनी इना समय हुई जानू चाहिए जे कहाँ की फसल लगाऊँ ना ओखा लगाऊँ की ना तरीका से खेती दूरी पर लगाऊँ वो सब
0: वो
1: खेत भी
0: सब
1: तैयार हुई गो।
0: गड्ढे भी होंगे, उस गड्ढे के अंदर जो है हमको गड्ढा भरना भी है। पहले गड्ढे का निर्जीवीकरण होगा। ये जो नौतपा का समय है, इस नौतपा के समय में पूरी मिट्टी के अंदर जितने भी हानिकारक कीट है वो सूर्य की गर्मी से लगभग मिनिमाइज हो जाते। फिर भी हमको जो है जब गड्ढा खोद लिया है तो उसके अंदर थीमेट का उपयोग करें, एक जो साफ आता है उसके पाउडर का उपयोग करें। और यदि आपकी जमीन काली मिट्टी है, हमको जमीन के आधार पर फल का चयन करना है, उसकी जल निकास क्षमता बढ़ाना है और जल धारण शक्ति को बढ़ाना है, ताकि जो बारिश हो रही है वो अधिक से अधिक जो है पानी को शोषित कर सके। तो इसके लिए हमको खाद का उपयोग करना है। यदि काली मिट्टी है तो उसमें हमको ईंट की चूरी और बालू रेती का खाद और मिट्टी को मिला के पूरा भर देना है। और यदि मालिक जो है आपकी मिट्टी में पत्थर बहुत है तो फिर उसमें जो है काली मिट्टी का उपयोग करेंगे और फिर उसको इस समय पूरा भर दें, ऊपर तक भर के उसमें जो खाद डाल के और छोड़ दिया जाए, फिर वो दूसरी जो है फसलें उसकी की तैयारी कर सकते हैं।
1: अच्छा मतलब उद्यान की फसल जी भाई लगाने चाह रहा हो उनका लेने बिल्कुल उपयुक्त समय छे कि वो की तैयारी पूरी अच्छा तरीका से कर ले ना अमर लगाऊ कहाँ की फसल उनका कहाँ की।
0: जैसे अगर हमको जो है फल उद्यान लगाना है, बगीचा लगाना है, तो इसमें 3 तरह से हम फल उद्यान लगा सकते हैं। एक तो हम जो है सीधे सीधे जो है नॉर्मल स्पेसिंग पे 18 और 20 फीट की दूरी पे लगा सकते हैं। दूसरी आधुनिक खेती करनी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अगर आप करनी है, मान लीजिए ड्रिप के साथ तो आपको खेती करनी है, तो हमको इसी समय ड्रिप की जो है लाइन बिछानी है, पूरी पानी की व्यवस्था जमानी है और गड्ढे के पास में ड्रिपर लगाना है। और उसमें आपको अगर 18 फीट की दूरी पर लगाना है, अगर आपको जो है और कम करनी, एक हाई डेंसिटी पर लगाना है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर लगाना है, 1 हेक्टर में आपके 300 पौधे भी आ सकते हैं, 500 भी आ सकते हैं और 1100 भी आ सकते हैं। तो जैसी स्पेसिंग पे आपको जो है लगानी है, जैसे आपने फसल का चयन किया है उस तरह से आपको गड्ढे खोदने हैं और प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन करते समय भी जनरली गलती ये होती है कि हमने मान लीजिए 1.5 फीट 2 फीट गड्ढा खोदा है और हम जहां से आदान सामग्री लेके आ रहे हैं, मटेरियल लेके आ रहे हैं, तो हमारे थैली में होता है वो ग्राफ्टेड पौधा है, तो हमको उतने ही पौधे को जमीन में गाड़ना है, गड्ढे में लगाना है, जितनी उसकी थैली है। और जो ग्राफ्टेड पौधा है उसकी जो ग्राफ्टिंग पोर्शन है वो जमीन से टच नहीं होना चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और पानी का समुचित तो उपयोग करें, भर के पानी नहीं देना है, जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी दिया जाए। आपने अगर ड्रिप का उपयोग किया, टपक सिंचाई का उपयोग किया है, तो 4.5 लीटर प्रति घंटे उसको जो है 1 घंटे में 4.5 लीटर पानी मिलेगा। तो आधुनिक संसाधनों का उपयोग करेंगे तो ड्रिप फर्टिगेशन के साथ में उसको घुलनशील उर्वरक भी दिए जा सकते हैं, पानी भी दिया जा सकता है, और जितनी आवश्यकता है उतना पानी और उतना फर्टिलाइजर। अधिक उत्पादन लेना है तो फर्टिलाइजर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ज्यादा हो रहा है तो कम किया जा सकता है। तो पौधे को भी हमको ट्रेनिंग दी जा सकती है, पौधे के तनाव के साथ में, पानी के तनाव दोनों एक साथ दिया जा सकता
1: है। फिर उस बात की कहाँ का पौधा रहेगा तो उनका हिसाब से पानी की व्यवस्था होना तरफ से करनी पड़ेगा।
0: जैसे

0: जब संतरा की अच्छी कीमत मिलती है उस समय फल नहीं होगा, और जब सर्दियों में फल ज्यादा आ
1: मतलब एक समय अपूर्ण खाओ का सारे को पोषण पानी सब रोकी देने ताकि उना समय अपूर्ण खाओ को कहीं भी उत्पादन नहीं मिला। बाद में जब अपूर्ण खा आवश्यकता छे जब अपनो बाजार तैयार छे उना समय अपूर्ण खाओ को उत्पादन मिला तो बाजार में भाव
0: भाव
1: चले।
0: अच्छा। यही ड्रिप का विशेष उपयोग है। इस सीजन में हमको जो उर्वरा शक्ति बढ़ाना है और जल धारण शक्ति बढ़ाना है और जल संरक्षण का रिचार्ज का भी कार्य करना है। जितना पानी हम ले रहे हैं, हमने साल भर की मान लीजिए 4 फसल ले रहे हैं, तो पानी को हम बना नहीं सकते, तो जो बारिश का पानी है उसको हमको भंडारित करना है। खेत का पानी खेत में
1: खेत
0: रहना
1: में
0: चाहिए, जिसके लिए नल और कुआं का रिचार्ज करें। अगर हम अपने घर में भी रह रहे हैं तो जो छत का पानी है वो भी सोखे गड्ढा खोद के फिर उस पानी को संग्रहित करना चाहिए, ताकि हमको खेती के लिए अधिकाधिक जल भू स्तर बढ़े और अधिक से पानी मिल सके।
1: ये उद्यानिकी खेती का साथ एक शब्द आवज व्यावसायिक खेती ना संरक्षित खेती।
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, मैं इसको मिस कर रहा था। एक्चुअली व्यावसायिक खेती अब जो खेती हो रही है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अब बाजार के आधार पर खेती हो रही है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश शासन अब ये चाहता है कि हमारा किसान उद्यानिकी के क्षेत्र में मेड़ों पर ही न रहे, अपनी जो फसल लगा रहा है उससे अधिकतम उपज प्राप्त करे और अच्छी कीमतों से मिले। हम नींबू संतरा मौसमी तक ही आधारित सीमित क्यों रहे हैं? अब जो है हाई वैल्यू क्रॉप्स आ गई हैं, जैसे आपके एवोकाडो में एक नाम लूं, ड्रैगन फ्रूट का नाम लूं, पैशन फ्रूट्स का नाम लूं, और आपको स्ट्रॉबेरी का नाम लूं, तो ये खेती भी हमारे यहाँ हो सकती। तो जो शहर के आसपास हैं वो जो है इन फसलों को हाई वैल्यू क्रॉप्स को लेके और उनकी व्यवसायिक खेती करें, ताकि जो है केवल उद्यानिकी फसलें ही एक ऐसी हैं जो 45 दिन से लेकर 60 दिन में अपनी उपज दे देती हैं। और एक एकड़ में, मैं छोटा सा उदाहरण लूं, एक एकड़ में पत्ता गोभी और फूल गोभी के 20,000 पौधे लगते हैं और वो 60 दिन में तैयार हो जाते हैं। और अगर वो 60 जो 20,000 पौधे लगे हैं उसकी कीमत भी हम 5 रुपया पौधा मान लें, फूल की मान लें, तो 1 लाख 3 महीने के अंदर कौन सी क्रॉप आपको जो है दे रही है? तो इस तरह से अगर हम जो है सब्जी की खेती करें और बेमौसम में करें तो उसकी कीमत और
1: और
0: बढ़ जाती है।
1: ज्यादा
0: तो व्यवसाय के रूप में अगर खेती करें, उसके नफा नुकसान लाभ और हानि को देख के अगर हम खेती करेंगे तो वह व्यवसायिक खेती कहलाती है। दूसरा प्रश्न आपने किया था संरचित खेती। संरचित खेती का मतलब ये है कि एक संरचना है, प्लास्टिक बनती है, पॉली हाउस और नेट हाउस है, प्लास्टिक मल्चिंग है, इनका उपयोग करके हम बेमौसम में, जैसे अगर हम गर्मी में मटर की खेती कर लें, तो एक एक एकड़ में अगर हमने मटर की खेती करी तो हमारी मटर की खेती में मटर के जो भाव मिलेगा वो हमको 100 रुपये से 150 रुपये केजी मिलेगा, और सीजन में वही आपके 15 और 20 रुपये किलो। तो प्रोटेक्ट कल्टीवेशन में अपना के और उसमें विभागीय अनुदान भी है, तो हम संरचित खेती का उपयोग करके जो नए युवक हैं उनको जोड़ा जाए, उनको जो है तकनीकी से जोड़ा जाए, यंत्रीकरण से जोड़ा जाए और एडिशन कराया जाए, वैल्यू एडिशन का उपयोग करें, तो वो जो है व्यवसाय खेती करके खेती को लाभ का धंधा के साथ साथ में वो उत्पादक होंगे और खुद एक उद्योगपति बन सकते हैं, लोगों को नौकरी देने का काम कर सकते हैं। हमारा किसान नौकरी क्यों करे, नौकरी देने वाला बने ना।
1: बिल्कुल आपने सही कहा कि विभागीय योजना न जी छे ओके यदि जानकारी मिली जाएगा तो ये जी लागत लगी रही वो काम में बहुत अंतर पड़ जाएगा।
0: मध्य प्रदेश शासन की तरफ से उद्यानिकी के क्षेत्र में जितनी भी फसलें हैं और जितना यंत्रीकरण है उन सब पे अनुदान दिए है। आप अगर जैविक खेती करना चाहते हैं, आप अगर बगीचा लगाना चाहते हैं, आप हाइब्रिड सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं, फूलों की खेती करना चाहते हैं, इन सब पे विभाग की तरफ से जो है अनुदान दे है। और जिले स्तर पे, विकासखंड स्तर पे हमारे जो है उद्यानिकी खाद्य प्रशासन विभाग के कार्यालय हैं, किसान उनके साथ संपर्क करे, जो भी आदान सामग्री ले रहे हैं वो जो है किसी अच्छे संस्थान से लें और उच्च गुणवत्ता वाले लें, हाइब्रिड लें, और उनके निर्देशन में अगर अपन खेती करेंगे तो जरूर लाभ ले सकते हैं और अनुदान भी मिलता है। अनुदान प्राप्त करने के लिए एमपी एफ

0: एसटीएस पोर्टल पर, उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग का एमपीएफ एसटीएस पोर्टल है, उस पर सब किसानों का पंजीयन होता है, ऑनलाइन पंजीयन होगा, उनको जो उसमें B1 खसरा नक्शा फोटो और बैंक पासबुक की एक छायाप्रति लगती है, और उनका जो पंजीयन हो जाता है, जब योजनाओं को जोड़ना होता है तो उनके पास मैसेज आता है कि आपको किस योजना में भाग लेना है, उनका पंजीयन होता है और उनका आदान सामग्री और अनुदान सामग्री किसानों को उपलब्ध कराई जाती है।
1: बहुत बहुत विस्तार से आपने हमारा किसान भाई बहन का जमीन की तैयारी सी लेना, गड्ढा खोदना सी लेना, कहाँ की फसल लगाऊनुज, कितो भाव मिलेगा, कमो बाजार में बेचनुज, न ओका लेना सरकार की योजना न को फायदो की ना तरीका से हमारा भाई बहन ले सकज, वो सब बात न की जानकारी इतना विस्तार से हमारा किसान भाई बहन ने दी। आप हमारा स्टूडियो में आया सुभाष चंद्र जी श्रीवास्तव, न अपूर्ण ने बात करी उद्यानिकी फसल न समसामयिक कार्य न का बारे में, इतनी अच्छी जानकारी का लेना हम आपका धन्यवाद देवाई।
0: आप और हमारे श्रोताओं को सबको सादर प्रणाम करता हूँ, और आगे भी अगर मेरी आवश्यकता हो तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी की।
2: भाइयों, अभी अपन ने यह सुनिया कि उद्यानिकी फसल में इन्हीं वक्त पे कौन कौन सा काम करना। हम उम्मीद करा कि हमारे जो किसान भाई बहन हों ये कार्यक्रम सुनी रहा है, वे इससे जरूर से जरूर लाभ उठाएगा न भाई लोग। अब अपन भी थोड़ा लाभ उठावा मनोरंजन को, तो अब भाई लोग अपन सुनांगा एक लोकगीत भाई हरि सिंह पटेल ने उनकी मंडली को गाया।

वाह भाई वाह, इन लोकगीत में तो आनंद है भाई। हरि सिंह पटेल ने उनकी मंडली को गायो, ये लोकगीत सुनो। एक में सब बात बताई, किसान भाई लोग कैसे किसी परिस्थिति में कामकाज करें ना, उसके बाद भी कभी पानी की कमी पड़ जाए तो कभी पानी ज़्यादा पड़ जाए। तो भाई सब भाई लोग इन्हें बाद में फिर एक बात और खास ध्यान आए, जब कभी ऐसा ही जाए तो अपन कहीं करा कि भैया हमारो बेड़ो पार लगा दीजो, अपन कहीं यही प्रार्थना करा नहीं, तो ये प्रार्थना को ये गीत है भाई, मारो बेड़ो पार लगाई दीजो। भाई प्रेम सिंह मोहन सिंह देपालपुरिया ने उनकी मंडली को गायो, सुना।

भाई प्रेम सिंह, मोहन सिंह देपालपुरिया ने उनकी मंडली उगायो ये लोकगीत के साथ साथ अपना आज कार्यक्रम की बखत भी लगी कि अपन काल की तय करना। कल सुबह अपन खेती की बात में सुनूंगा वृक्षारोपण का महत्व के बारे में, न सांझे खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आज की बात होगी, लोकगीत होएगा, न साथ ही उपयोगी चर्चा होगी। तो अब चला और सब किसान भाई उनसे कहा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया के सुनने वालों को आसिफ अली का नमस्कार। चलते हैं कार्यक्रम के आज के सफर पर। बाहर आई तो दिल की कली भी खिल गई, तेरी एक झलक से उदासी भी पिघल गई।

कोयल गाए भंवरें करें गुनगुन, हर कली कहे चीले पल ये सुन सुन, बाहर सिखाती है हमें यही एक बात, मुसीबत के बाद भी आती है नई सौगात।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात। युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: बाहर आई तो गली गली रंग बरस गया, तेरे नाम से मेरा हर लम्हा हंस गया।

0: क्यों हम दीवाने हो जाए ना।
1: बाहर हो और दिल न झूमे, ऐसा हो नहीं सकता। तेरी हंसी की धुन बिना ये गीत हो नहीं सकता।

बाहर कहती है आओ पुरानी यादें ताज़ा करें, दोस्ती की शाख पर बैठ के फिर से शरारतें करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।

0: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
1: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
0: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is

अभी आप सुन रहे थे चित्रगीत, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। राष्ट्रीय चित्र पत्रिका चित्र भारती कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ

0: अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये
1: जो गाना बना
0: और दूसरा गाना था

1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने। वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर।

1971 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

मनी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे।

1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला। जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है।

प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है, जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम, जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है, जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा, जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे, VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही।

0: कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले जैसे मियां बीवी राजी, बात एक रात की।

कपूर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर उधर से इधर आ जा रही थी बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
0: फिर कोई

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई, लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: नमस्कार। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार। इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदीप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Srimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
0: Dr. Vivek Karmahe अपनी गायन की शुरुआत राग श्री से कर रहे हैं। विलंबित रचना तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं वारी जाऊं रे तुम पे। द्रुत रचना तीन ताल में है जिसके बोल हैं चलो रे माई राम सिया दर्शन। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
1: डॉक्टर विवेक करमहे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम पे। द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन ताल विद द लिरिक्स चलो रे माई राम सिया दर्शन। Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: नागश्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektaal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektaal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lalchai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyamji.

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Rag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए।

दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।